एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारा आज का प्रसारण

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह

0: भाजपा की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आरंभ करते हैं देश वंदना से।

समूह स्वर की इस देश वंदना के बाद आइए सुने भगवान गणपति की ये भक्ति रचना बेला सुलाखे और साथियों के स्वर में।

गणेश वंदना के बाद लीजिए पेश है लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना।

श्री राम वंदना के बाद राम भक्त हनुमान का स्मरण करते हैं। पेश है हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: चित्रा सिंह की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। पेश है सामयिक सुझावों का कार्यक्रम खेती की बात। इसमें आज जानकारी मिर्च की खेती, इस विषय पर वाचन स्वर रूपेश कंवर का है।
1: वो राम राम जय जोहार। मैं वो अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन में हमारा भीग बेरा में धान पान के बूता काम करा था। जैसे जैसे पानी कांजी गिरा था वह वैसे वैसे हमार खरीफ सीजन के धान पान के बूता काम भदराज जाता हुआ। बात करी संगवारी हो अभीग बेरा तो कहीं न कहीं हमन खेती किसानी के माध्यम से अक्तिहा अगर बारी बखरी के बूता काम करा थन तो अवैया बेरा में हमन ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हमन कमा सकत हन। आज हमन देखबो बाजार हाट जावत हन, 100 रुपया के अगर साग भाजी लेवत हन झोला भराए घलो नहीं। फिर बात करी संगवारी हो मिर्चा के, पताल के, धनिया के अगर खेती करत हन तो कहीं न कहीं हमन अक्तिहा लक्तिहा आमदनी हमन कमा सकत हन। आज किसान भाई हो अपन कर खेती की बात में गोड़ बात करबो मिर्चा के खेती की। संगवारी हो आए दिन अपन ला हमारा आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर कतिले सफल किसान भाई मन के अनुभव ला परोसथन कि कैसे मन अभीक बेरा आनी बानी के भाजीपाला लगा के दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते। तो आज हमन बात करत हन संगवारी हो मिर्चा के खेती की। तो आपन जानते हवा कि मिर्चा के खेती हमार बार एक नकदी फसल के रूप में जाने जाते और आज मिर्चा के भाव बहुत अच्छा हवा है। जोन किसान भाई मन मिर्चा खेती करा थे कहीं न कहीं मला आज दोहरा से दोहरा आमदनी प्राप्त हुआ थे। संगवारी हो मिर्चा की खेती ला हमन नकदी फसल के रूप में मनाए जाते और कहीं न कहीं मिर्चा खेती ला हमन 12 महीना हमन एकर खेती कर सकत हन। बात करबो किसान भाई हो मिर्चा खेती बर किसना माटी भुइया की आवश्यकता होते तो बता देते हैं अपन मिर्चा की खेती करत हन तो सबसे उपयुक्त माटी हवे बालुई डूमर माटी सबसे अच्छा रहते। हमारे बात की विशेष चेत करे के आवश्यकता होती संगवारी हो जोन भुइया में हमन मिर्चा के खेती करत हन उमा पानी की निकासी और सिंचाई के उपयुक्त साधन हुए। बरसात की बेरा हवाए लगातार पानी कंजी गिरत हवाए, अगर पानी भराव हो जाते

0: तो कहीं ना कहीं हमारे जो फसल अपनावा थे मिर्चा के खेती ओमा ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने के संभावना घलो रहती। तो प्रयास करी संगवारी हो ऐसे भूया के हमें चयन करना चाहिए जेमा हमन ज्यादा से ज्यादा पानी के निकासी और सिंचाई हमन कर सकी। मिर्चा के खेती के पीएच के मान की बात करी संगवारी हो अपन करा 6.0 से 7.5 सबसे उपयुक्त रहते। तापमान के बात करी संगवारी हो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस अभी जुलाई के महीना में हमन एक रोपाई कर सकत हन। काबर के अभी बेरा बहुत अच्छा हवा है, भूया हाँ कंचा कंचा हवा है और संगे संग ए बेरा में हमारा पानी ज्यादा सिंचाई करे की आवश्यकता घलो नहीं पड़े। कई बार ऐसे होते कि हम बाजार हाट जाथन और जोन भी किस्म के हमारा बीजा की आवश्यकता होते सस्ता मिलते ओला लेके आ जाथन ठगादन। तब संगवारी हो जब फसल है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन नहीं हो तो सबसे पहले हमारा यही करना चाहिए कि मिर्चा की खेती करा था तो हमारा उन्नत किस्म है ओला हमारा चयन करना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी हाइब्रिड किस्म है तेजस पन सी वन अर्का मेघना ज्यादा पैदावार वाला है और संगे संग कम रोग लग। देसी किस्म की बात करी संगवारी हो जयपुर लाल सिंदूर तीखापन एवं ज्यादा भाव वाला है और कहीं न कहीं अगर एक खेती करा था हमन तो सबसे ज्यादा उपयुक्त एमा हमन आमदनी कमा सकत हन। खेती किसानी के तरीका की गोड़ बात करी संगवारी हो तो सबसे पहले हमला नर्सरी तैयार करना बहुत ही आवश्यकता होते। तो नर्सरी तैयार करे के बाद हमला 30 से 35 दिन बाद पौधा जो हवा है वाला दूसरा खेत में हमन रोपाई कर सकत हन। पौधा के दूरी की बात करी संगवारी हो कतार के कतार 60 सेंटीमीटर और पौधा के दूरी हमला 45 सेंटीमीटर के आसपास हमला रखना चाहिए। बात करी खाद के तो आज हमन देखी तो कहीं कहीं हमन प्राकृतिक खेती डहर चला था और जितके ज्यादा हो हमन प्राकृतिक खेती के माध्यम से अपन भूया की उपजाऊ क्षमता ला बढ़ा सकत हन। मिर्चा के खेती करथन संगवारी हो हमला पहली जोताई खानी गोबर खाद जो हवा 15 से 20 टन एकड़ पाछू हमला छिड़काव करना चाहिए। बुवाई और फूल आवत है वो बेरा हमला हल्का मात्रा में एनपीके के जो मात्रा हवा 3-3 बार हमला अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। एकर से कहीं कहीं पौधा के ग्रोथ ज्यादा हो और एमा फल ज्यादा आए के घलो समान रहते। सिंचाई की बात करें किसान भैया तो अभी के बेरा में हमारा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है काबर के भूया कंचा कंचा है। अगर फिर भी पानी बरसात अगर नहीं आवाते तो हमारा एक हफ्ता में एक बार हमारा अभी के बेरा सिंचाई करने के आवश्यकता पड़ते। जौन बेरा फूल आवा थे वो बेरा हमारा भूया ला नमी बनाए की आवश्यकता पड़ी काबर की अगर भूया नमी नहीं रही संगवाही तो कहीं ना कहीं पौधा सुखा जाही और फल के जो उत्पादन हवा बहुत कम आही। तो कहीं ना कहीं संगवारी अभी बेरा अगर हम मिर्चा खेती करत हन तो अवैया बेरा में हम दोहरा से दोहरा आमदनी हमन कमा सकत हन। और अभी बेरा हवा संगवारी हो मिर्चा की खेती के और ज्यादा से ज्यादा अपन अगर मिर्चा खेती करना चाहता हुआ तो आपके आसपास के जो लखठा के उद्यान विभाग हवा है वहाँ के अधिकारी मन कर संपर्क कर सकत है। और उद्यान विभाग कति आज खेती बाड़ी के तहत आप मन कर अबड़गन योजना घलो हवा है। योजना के माध्यम से भी हमन लाभ लेके अपन आर्थिक स्थिति और संगे संग खेती किसानी के रकबा ला बढ़ा सकत हन। राम राम जय जोहार।
1: मिर्च की खेती पर आपने सुनी जानकारी कार्यक्रम खेती की बात में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। पेश है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर रंजना जोगलेकर और साथियों का है। संगीत संयोजन किया है सतीश भाटिया ने।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वनदेवी और वनदेवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम नव विहान। इसमें आज चर्चा पोषण अभियान पर।

पोषण अभियान, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन NMM के नाम से भी जाना जाता है, ये अभियान भारत में व्याप्त कुपोषण की समस्या से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2018 से शुरू किया गया था। हालांकि ये कार्यक्रम वर्ष 2017 से ही लागू कर दिया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कुपोषण के स्तर को कम करना, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना

प्रमुख रूप से है। ये योजना किशोरों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करता है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करते हुए ये अभियान क्रियाशील है। प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना भी इस दिशा में कार्यशील है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बौनापन, एनीमिया, कुपोषण और कम वजन वाले बच्चों के जन्म दर को कम करने का लक्ष्य विशेष रूप से रखा गया है। पोषण अभियान मिशन में कुपोषण से संबंधित विभिन्न अन्य योजनाओं की मैपिंग करना और ICT आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी और उनके मध्य तालमेल स्थापित करना है। निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देना, आंगनबाड़ी केंद्रों के कामकाज को अनुकूलित करना और सामाजिक लेखा परीक्षा करना भी इस अभियान में शामिल है।

अन्य योजनाओं की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना PMMVY, जननी सुरक्षा योजना, किशोर युवतियों के लिए योजना SAG और स्वच्छ भारत अभियान PDS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस अभियान में शामिल हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई अन्य विभागों का सहयोग और समन्वय है। प्रतिवर्ष सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आहार विविधता, खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण और पौष्टिकता के महत्व को रेखांकित कर आम जन और माताओं और शिशुओं को स्वस्थ बनाने की दिशा में ये अभियान बेहद सकारात्मक रूप से कार्यशील है। 4.37 लाख पोषण वाटिका का निर्माण भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया गया है, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत हैं। नवविहान पर आपने सुनी चर्चा पोषण अभियान पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। कार्यक्रम यादों के झरोखे से पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 से। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज कलाकार होंगे भागवत सप्रे, भीम यादव और नीलिमा जान और साथी। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा 9:00 से और फिर 11:30 से और फिर 12:00 से 5:00 तक। छत्तीसगढ़ी बातों और गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुम्हर गोठ हमर गीत प्रसारित होगा 10:00 से। प्रस्तुति होगी मदन पांडे की। 10:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा 11:00 से। संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत प्रसारित होगा 5:05 पर। युवा जगत कार्यक्रम

सुनिएगा शाम 5:35 पर। इसमें आज की बात होगी मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र विषय पर और क्रम मेरा शहर प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। 6:20 पर ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा और इसका शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिएगा 7:20 से। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा पशुधन के समुचित देखभाल, साथ ही औषधीय मशरूम की खेती और उपयोगिता विषय पर कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा की अतिथि व्याख्याता डॉक्टर चेतना जांगड़े से ली गई भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। भेंटकर्ता होंगे बैशाखू भैया। साथ ही मंडी और मौसम पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा रात्रि 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से।

0: प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा 7:05 पर। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज कलाकार होंगे भागवत सप्रे, भीम यादव, नीलिमा जान और साथी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में और फिर 7 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानाम् आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानाम् अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
1: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् 26

0: इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च अनुचित साधनप्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतरदण्डविधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लादजोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारम् अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमानमन्त्रालयैः सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग

0: के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4वां राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, हमारे देश में अनेक सपूतों ने जन्म लेकर अपने कृतित्व से भारत भूमि का मान बढ़ाया।

हम उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ऐसे ही महान सपूत थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब का पूरा नाम अब्दुल वकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। आपका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। कलाम साहब का गणित के प्रति गहरा लगाव था। डॉक्टर APJ कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी और वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। कलाम साहब वर्ष 2002 में कलाम साहब को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम के जरिए नई सहस्त्राब्दी से जुड़ी अपनी अवधारणाओं को बखूबी अभिव्यक्त किया है। इस पुस्तक ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 राष्ट्रीय रणनीति पेश की है, जिसमें परमाणु ऊर्जा का विस्तार, प्रौद्योगिकी को और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में उनकी महती भूमिका निभाने के कारण उन्हें मिसाइल मैन की नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ कलाम साहब लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी हावरक्राफ्ट नंदी को भी उन्होंने डिजाइन किया था। सच्चे दिल से देश सेवा करने के कारण उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा था। मिशन इंडिया, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, द ल्यूमिनस स्पार्कस, इंस्पायरिंग थॉट्स सहित उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। पुरस्कारों की बात करें तो कलाम साहब को रामानुजन पुरस्कार, इंदिरा गांधी वीर सावरकर पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मान प्रदान किए गए हैं। महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति जैसे पदों पर सेवाएं देने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में भी कार्य किया और देश को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने में महती भूमिका निभाई थी। ग्यारहवें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वर्ष 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने का कार्य जारी रखा। वे कहते थे, युवा ही देश के भविष्य हैं और उन्हें बड़े सपने देखना चाहिए। डॉक्टर कलाम एक महान लेखक भी थे। उनकी पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स युवाओं को आज भी प्रेरणा प्रदान कर रही है। सरल जीवन जीना और ज्ञान के विस्तार पर वे विश्वास रखते थे। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ कलाम साहब चिरनिद्रा में लीन हो गए। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका आदर्श व्यक्तित्व हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 1-4-4-4-7 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: श्रोताओं, आज का दिन एक और विशेषता लिए हुए है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, जिसकी स्थापना प्रारंभ में 27 जुलाई 1929 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी, 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम पारित होने पर अपना वर्तमान नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो इसके गौरवशाली इतिहास के 87 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है। ये संगठन विशाल और विविध रूप से विकसित हो चुका है। CRPF में एक निर्देशालय, 4 क्षेत्रीय मुख्यालय, 21 प्रशासनिक क्षेत्र, 2 परिचालन क्षेत्र, 39 प्रशासनिक रेंज, 22 प्रशिक्षण संस्थान, 43 समूह केंद्र, 3 केंद्रीय हथियार

0: यार भंडार CWS 7 गोला बारूद कार्यशालाएं AWS 20 जनरल ड्यूटी बटालियन 6 VIP सुरक्षा बटालियन 6 महिला सुरक्षा बटालियन 16 रैपिड एक्शन फोर्स 10 कोबरा बटालियन 7 सिग्नल बटालियन और 1 विशेष ड्यूटी समूह शामिल है। CRPF एक राष्ट्रव्यापी उपस्थिति वाला बल है जो पूरे भारत में इसकी संरचना और तैनाती का उदाहरण प्रस्तुत करता है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप शीघ्रता से ढलने और राज्य पुलिस के साथ निर्बाध सहयोग करने की क्षमताओं ने इसे विशेष पहचान दिलाई है। भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, आतंक विरोधी अभियान, अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, आपात परिस्थितियों में आक्रामकता का मुकाबला करना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य, साथ ही साथ आम चुनावों के संचालन में CRPF ने बड़ी महती भूमिका निभाई है। हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र और देश के नामी गिरामी प्रतिष्ठित संस्थानों सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की सुरक्षा में CRPF की भूमिका उल्लेखनीय है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में CRPF के गश्ती दल पर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के दौरान 10 वीर CRPF जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके सम्मान में इस दिवस को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के सरदार पोस्ट पर तैनात CRPF की 2 कंपनियों ने पाकिस्तानी सेना की 1 ब्रिगेड के हमले को विफल कर दिया था। इस लड़ाई को पुलिस बलों द्वारा लड़ी गई असाधारण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। घरेलू सुरक्षा मोर्चे पर CRPF ने वर्ष 1980 में पंजाब को उग्रवाद के दौरान शांति बहाली में और 1990 के दशक में त्रिपुरा में हुए असंतोष को शांत करने में, साथ ही साथ भारतीय संसद पर हुए हमले और वर्ष 2005 में अयोध्या पर हुए हमले को CRPF ने अपनी सजगता से नाकाम कर दिया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को अपनी बहादुरी, समर्पण और देश सेवा के लिए कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आज CRPF अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा है। हम सभी जवानों और CRPF से जुड़े सभी लोगों को स्थापना दिवस की बधाइयां प्रेषित करते हैं। श्रोताओं, बात सुरक्षा की है तो यातायात में भी सुरक्षा का बड़ा महत्व है और यातायात सुरक्षा के लिए हम प्रसारित करते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, जो हमें बिलासपुर पुलिस के सहयोग से प्राप्त होता है। आइए सुने आज का ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, प्रस्तुत कर रहे हैं उमा शंकर पांडे।
1: नमस्कार मित्रों, उमा शंकर पांडे से लीजिए सुनिए बिलासपुर जिले का आज का ट्रैफिक अपडेट। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सर्व समाज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आज राम मंदिर तिलक नगर से गौ सम्मान आह्वान अभियान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम मंदिर से प्रातः 10 बजे यह शोभा यात्रा चलकर मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिए जाने की योजना है। वहीं 3 दिवसीय श्री राम श्रद्धा यात्रा के आज तीसरे दिन रामकृष्ण मंदिर कोनी से यात्रा दिन के 11 बजे प्रारंभ होगी, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बूढ़ा देव मंदिर बिरकोना, अटल चौक श्री राम चौरा, माँ मावली देवी मंदिर बिरकोना, माँ महामाया मंदिर से बैमा बस्ती होते हुए ग्राम नगोई वैष्णो देवी मंदिर में संपन्न होगी। उपरोक्त दोनों ही यात्रा में चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, सड़क में इस प्रकार चलें कि सिर्फ आपसे ही पूरी सड़क व्यस्त ना हो, सड़कों में चल रहे औरों को भी पर्याप्त स्थान मिले, कहीं भी यातायात बाधित ना हो। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के साथ ही सभी वाहनों को तत्काल सहायता दे दें, शहर की सुगम सरल यातायात व्यवस्था के भागी बने। इसके साथ ही गांव से लेकर शहर तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ठंड वर्षा गर्मी सभी ऋतुओं में विकास कार्य

इसके साथ ही गांव से लेकर शहर तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ठंड, वर्षा, गर्मी सभी ऋतुओं में विकास कार्य का अनवरत रूप से चलना बिलासपुर जिले की फितरत बन चुकी है। अनेकों स्थानों के साथ ही इस समय तिफरा चकरभाठा अर्थात माननीय हाई कोर्ट तक मुख्य मार्ग के किनारे बड़ी नाली का काम चल रहा है। कहीं कहीं पुरानी नाली से मलबा भी निकाला जा रहा है। ये सभी निर्माण सामग्री आदि सड़क के किनारे रखी है जिससे सड़क संकीर्ण हो रही है, जबकि सड़क में वाहनों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ से आते जाते समय पूरी सावधानी से चलें। इसी प्रकार शहर के अंदर कई स्थानों में सड़कों में पुराने डिवाइडरों को तोड़कर ऊंचे बड़े बड़े डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी मलवा एवं गिट्टी राड आदि रखी है जिससे सड़क संकीर्ण हो रही है। पूरी सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर अभी आपने सुना, और अब समय हो रहा है कार्यक्रम समाप्त करने का। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब आज सुबह कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। मानस तिवारी को नमस्कार।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम का पहला गीत हेमंत कुमार के स्वर में, शकील बदायूनी ने गीत लिखा है, हेमंत कुमार का संगीत है। पेश है 20 साल बाद फिल्म का ये

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मुकेश के स्वर में कमर जलालाबादी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया छलिया फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। ये सूचना महिला सभा कार्यक्रम से संबंधित है। महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत फोन करें गीत सुने क्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार सुबह 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूम के, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन फ़ोन नंबरों पर 266592। फ़ोन करने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और अब फिर रुक करते हैं सदाबहार यादों के झरोखे से कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। ये गीत है तीन देवियां इस फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। मजरूह ने गीत लिखा है, एसडी बर्मन का संगीत है। पेश है तीन देवियां फिल्म का ये गीत।

यादों के झरोखे से ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया, प्रोफेसर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है मोहम्मद रफी के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया द ट्रेन फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, महिला सभा कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रम फोन करें गीत सुने का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 28 जुलाई 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसके रिकॉर्डिंग 27 जुलाई 2026 सोमवार सुबह 11:00 से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा सावन के झूले। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकते हैं उनके नाम हैं आया सावन झूमके, सावन को आने दो, सनम बेवफा और क्रिएचर। आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 07752-266592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब रुख करते हैं यादों के झरोखे से कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: पतंग फिल्म के इस गीत के साथ ही यादों के झरोखे से कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार

0: समाप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में

0: श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार PM ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट UG प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन Z का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम

0: जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा। श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State government and Union Union Territory Administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act, according to the provisions of

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। पेश है छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम का पहला गीत भागवत सप्रे और साथियों के स्वर में।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, भीम यादव के स्वर में।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। पेश है भागवत सप्रे और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अगला गीत।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, भीम यादव और नीलिमा जान के स्वर में।

0: अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत भागवत सप्रे और साथियों के स्वर में।
1: नो मैं डॉक्टर गुनिया नो अब भाई नो मैं डॉक्टर गुनिया नो अब भाई।

अमराई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है भीम यादव और साथियों के स्वर में कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनाते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इसे लिखा है, विकी प्रसाद का संगीत।

श्रोताओं, आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें आदरपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, ज्ञान अर्जित करने और देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उनकी सादगी, कर्मनिष्ठा और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। और आइए, चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में साथ दिया है रोचक कोहली ने। कुमार ने इस गीत को लिखा है, संगीत रोचक कोहली का, फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत लुका छुपी इस फिल्म से, आवाज करण चेम्बी की और निर्माण ने इसे लिखा है, संगीत तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय का।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं वेद शर्मा की आवाज में मलंग फिल्म से। कुणाल वर्मा और हर्ष लिम्बाचिया का के बोल हैं और वेद शर्मा का संगीत।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: और आइए अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। इस फिल्म का गीत अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजें, गीत संगीत अखिल सचदेव का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो हाथ में।
2: अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
2: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहां है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? आओ आओ अब आयो हाथ में। आओ आओ शाबाश।
0: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी। अरे काल

0: बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरव की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ। काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ आपका कोई काम नहीं
2: है? है, काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा,
3: क्या हुआ?
1: देखो ना, देखो।
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नगदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
4: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
2: बस बस, बात हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे, वरना।
4: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
2: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरव की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
0: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं, जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
2: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
5: आप घर में हैं?
2: मैं
5: आदाब अल्सबिशन साहब,
2: आइए आइए सेठ जी, आइए।
6: नमस्ते सेठ जी।
2: नमस्कार। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
5: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
6: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू, तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
2: हाँ। ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहां आपको ये बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया, हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

0: परेशानी।
1: वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: फिल्म
1: याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर
2: पुरस्कार। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
3: रायपुर है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इसके प्रमुख जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी होंगे। आज सरकार लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इस विधेयक को लोकसभा की आज की कार्यसूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान शुरू किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की माताओं, बहनों और बच्चों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अपने हाथों से बनाई गई राखी, सैनिकों के लिए शुभकामना संदेश और अपने आंगन की एक चुटकी मिट्टी 30 जुलाई तक नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एकत्रित रक्षा सूत्र और संदेश पूर्व सैनिक महासभा के माध्यम से सेना मुख्यालय भेजे जाएंगे, जहां से इन्हें देशभर में तैनात सैनिकों तक पहुंचाया जाएगा। श्रावण मास में अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर यात्रा मार्ग में सभी हैंडपंपों की मरम्मत और क्लोरीनेशन कराया गया है। साथ ही भोरमदेव मंदिर परिसर में भी पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के माधोपल्ली क्षेत्र में कल उफनते नाले को पार करने के दौरान एक कार तेज बहाव में बह गई। हादसे में एक व्यक्ति के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन शाम को अंधेरे के कारण ऑपरेशन रोक दिया गया। आज सुबह से फिर खोजबीन शुरू की गई है। वहीं बिलासपुर जिले की अरपा नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेज दिया गया है। कोनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था, वह अवदाब में बदल गया है, जिसके असर से बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम 136वें एपिसोड में कोरबा नगर पालिक निगम द्वारा कैच द रेन अभियान के अंतर्गत किए गए जल संरक्षण के कार्यों का

उल्लेख किया है, जिससे कोरबा जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कोरबा नगर पालिका के अंतर्गत SAM 2.0 योजना के तहत 10 विभिन्न स्थानों पर रिचार्ज वेल का निर्माण किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इसके प्रमुख जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी होंगे। राज्य सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है छत्तीसगढ़ी बातों और गीतों का फोन इन कार्यक्रम तुम्हार गोठ हमर गीत। प्रस्तुत कर रहे हैं मदन पांडे।

0: बादर घपोरे हावय, अंधियारी घेरत हावय, पानी बरसावय झमकझोर हो, मन मंजूर नाचन लागय, पगला कस मतावन लागय, बरखा के आनंद म हो के अभोर हो, आव इही आनंद के रसपान कर लीन उही कार्यक्रम म जेन ल कहिथे तुहर गोट हमर गीत। कार्यक्रम ल शुरू करत हन इही फोन कॉल ले। हेलो
1: हेलो,
0: तुहर गोट हो हमर गीत कार्यक्रम में अपन सुधीर संगवारी के, सुनैया संगवारी के स्वागत करत हन। भाई कहाँ ले बोला था आप मन, कौन बोला था संगी?
1: जय जोहार भैया।
0: जय जोहार, राम राम, बताओ कहाँ ले बोला?
1: अमन घोरहल बोला था, कमलपुर के पास घोरहा करके गांव है।
0: अच्छा, और आपन के शुभ नाम का है संगी?
1: मोर नाम परदेसी राम है।
0: परदेसी भैया, कार्यक्रम में आप मन के हम स्वागत करत हन, और बतावा होती है आप मन के घोरहा में कैसे पानी कांजी कैसे गिरा थे, कतका है
1: पानी कांजी है? तो ठीक है, शुरू में ज्यादा गिर दे रही है।
0: हाँ,
1: तो धान वान के नुकसान हो गए है, फिर से दोबारा बुआई वगैरह करे हैं।
0: अच्छा, रोपा ओपा के काम चलत है कदेवा?
1: हाँ चलत है, ओकरे सीजन है।
0: हाँ हाँ,
1: तो पिछले बार भी हम फोन लगा रहे हैं लेकिन नहीं लग पा रही से, बिजी रही से ओकर वजह हो सकते।
0: हाँ, और इधर ही देखा आप मन के लगन काम आ गए, अब आप मन के फोन घर लग गए संगी, बढ़िया लागत है आप मन से बातचीत करके। ता आपन काबू था करते परदेसी भैया, खेती किसानी करता कि और संग में कुछ?
1: आप घर के मन करते, पिता जी मन खेती बाड़ी है, वहां मन तो बिलासपुर में रही थन।
0: अच्छा,
1: ता यही हमर... काम धाम करथन।
0: अच्छा, ता रेडियो सुनता संग में बुता काम मन के संग में?
1: हाँ हाँ, घर में रेडियो सुनता ना, काम बुता चला जाता था तो नहीं सुनना पाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: बाकी घर में रहता ना तो बिल्कुल सुनने की कोशिश करता और रोजे सुनता।
0: चला बढ़िया है भाई, और आप मन जैसे सुनैया संगवारी मन से बात होते तो हम बड़ा प्रसन्नता होते भैया, परदेशी भैया। और अपन फोन लगाया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुघर सही निक सही गीत सुनो। गीत लो सुनावत है कुलेश्वर और कविता हिरकाने मन।
1: हाँ हाँ,
0: राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार, जय जोहार।

0: हेलो।
1: तुहर गोठ हमर गीत के कार्यक्रम के अंक मा अपन सुनैया संगी के स्वागत करत हन। कहाँ ले बोलाई था संगी?
0: धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत है हम लोग।
1: कहाँ ले बोलाई था संगी?
0: जय जोहार।
1: जय जोहार। कहाँ ले बोला था?
0: मैं हाँ धमनी राजेंद्र से समयलाल धीवर बोलत हूँ जी।
1: समयलाल भैया, कार्यक्रम में आप मन के हम निक निक मीठ मीठ स्वागत करत हन। और
0: धन्यवाद जी।
1: कैसे है मौसम? होती के पानी कांजी झिमिर
0: अमर
1: झिमिर?
0: कुछ मौसम ना काबर धान लटपट बोए हन, डबल तिबल धान बोत हन अमर कुछ
1: हाँ
0: दतार के बोत हन अमर।
1: अच्छा, पहली जब
0: भारी पानी गिरे है, एक हफ्ता ना भारी पानी गिरे है गया, दतार के पूरा खेत खाल बोए हन। का जे ट्रैक्टर जाए ना वो ट्रैक्टर ये लटक जाऊ जाके।
1: अच्छा, पानी ज्यादा हो गया इसे कदेवा?
0: हाँ पानी ज्यादा हो गए, 4 ठक 5 ठक ट्रैक्टर में तिराए है। हमन तो एक खड़ी जमीन लेना उदानिम खान के बोहन।
1: अच्छा, अब देखा ऐसा ही
0: भारी कष्ट है पैसे की किसानी।
1: देखा ऐसा ही किसान ल भुइया के भगवान नी कहे जाए। और देखा समय लाल भैया,
0: हाँ जी
1: अतका मेहनत लगा के अन्न ल उपजा था आप मनते हैं, बहुत भारी चीज है जी, है बहुत भारी त्याग है जेकर चलते
0: हाँ
1: पूरा
0: जी
1: दुनिया के पेट भरत है ना भाई? ता मन
0: का
1: कहे
0: बात है।
1: और बतावा का कब चलत है?
0: अभी देख घर में हूँ, देखो खेत दिखल जाऊंगी कि निकले थे रहने हैं। फोन लगा दूंगी कि 10 बजे से लगे हमें।
1: देखा आपन
0: कार्यक्रम
1: के
0: ने
1: हमन
0: हमला बहुत अच्छा लगते, और ईमेल करे गीत में चिट्ठी पुलिस कार्यक्रम में हम भाग लेवत हन,
1: बिल्कुल
0: हमारा ध्यान दो भाई। अब आपके आकाशवाणी से फिर बिलासपुर ही चल रहे हैं, प्रसारण हो रहा है, कंसेप्ट बंद हो गए।
1: नहीं ठीक है, आप मन इसी तरह से अपन प्यार लगाए रह, अपन मयाल बनाए रखिए संगी, और हमन आप तक
0: हाँ
1: निक निक कार्यक्रम मतलब पहुंचाबो, निक निक गीत गोविंद से मनोरंजन
0: जी
1: हो। आपसे बात करें बहुत बढ़िया लगी से समयलाल भैया,
0: धन्यवाद भैया,
1: राम राम, जय जोहार संगी।
0: जय जोहार।
1: एक गीत लो सुनावत है नकुल जायसवाल और सावित्री कहार।
2: तोरे आगी घूंगवा थे सगा झड़ी मां सावन के, ए सगा
3: का ए सगा।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम आए और सुनैया संगवारी के स्वागत करत हन भाई। कार्यक्रम में आप मन कहाँ ले बोला था?
1: जी भैया नमस्कार।
0: नमस्कार, कहाँ ले बोला था दीदी?
1: मैं कड़ार शारदा खेत से जागृति बोला था भैया।
0: बताओ का हाल चाल है? पानी कांजी कैसे होती? गिरत है? कतकतार है?
1: सब बढ़िया है भैया। अभी तो झमाझम बारिश होवत है।
0: बारिश के आनंद तो सबे ले थन, संग में खेती किसानी के बूता घला भद रहा है कई देवा।
1: हाँ भैया अभी थरहा लगाई चला था जम के सब बो रहा है।
0: थरहा लगाए जाते तो एक प्रकार से देखे तो सब जुड़ मिल के एक संग बूता काम गीत गोविंद है, मस्ती मजाक चलत रहते तो टाइम है ऐसे कट जाते पता ही नहीं चले कैसे कहा।
1: हाँ भैया
0: बूता के बूता नहीं पड़ते और संग में बढ़िया सब जन से मिलना जुलना घला होते, बढ़िया लगते उसने मौसम देख के। और संग में मेहनत घला उत के हवे जागृति बहनी, अब पानी गिरत है तब हो घाम है तब हो, है ना
1: जी
0: भाई?
1: भैया।
0: हाँ, एकर अलावा आप खेती किसानी के अलावा जागृति बहनी काम में आप मन की रुचि है का करता तेला बता
1: हाँ
0: घर में?
1: भैया मोर शादी हो गए है। मैं अपन मायके से कॉल करा पत्र लिखा मोर मायके दगरी उड़न ताल हरे।
0: अच्छा, तो मतलब पहली भी श्रोता रहा आप रेडियो के और अभी भी आप
1: हाँ
0: नियमित रूप
1: भैया
0: से
1: लेकिन फोन है बहुत दिन के बाद 1.5 साल के बाद लगी सर छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में।
0: कार्यक्रम में फोन लगे हैं आपके तो है, बड़ा खुशी की बात है। और
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: भैया बिकट दिन के बाद लगे।
0: अब रेडियो सुनता था एक आप मतलब का फायदा मिलता तेला बता।
1: हाँ भैया रेडियो सुनने से ताजा खबर मिलते समाचार और बहुत सारे जानकारी मिलते भैया युवा जगत से महिला सभा से किसान वाड़ी से।
0: तो आप मन ला ए चीज के भरोसा होते कि रेडियो के कार्यक्रम से मनुष्य के जीवन है सुधरते संवरते और कई ठे तकलीफ मन दूर होते हैं।
1: हाँ भैया
0: बढ़िया लगी बहनी आपने से बात करके, और इसी तरह से जुड़े रही है आकाशवाणी के कार्यक्रम मनसा। आप मन फोन करे हो तो कहले बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: भैया मैं कुछ बोलना था। सन
0: बिल्कुल बोलो।
1: सन करा थे पगली हवा कुहू कुहू गावा कोयली घला घिर घिर जाथा कारी घटा बांटे बासु सबके पूछत पता आगे है।

0: सावन के कुरवैया।
1: वाह भाई वाह भाई, एला आपन खुदे लिखे हा कि?
0: नहीं भैया, छत्तीसगढ़ी गीत कविता पढ़ात रही था।
1: अच्छा, मतलब आप मन के रुचि जो है ते बहुत है मामले में, अच्छा है।
0: जी भैया,
1: बनाए रखा अपन
0: हमर गांव साधा रे भैया, करार में साधा गांव।
1: चलो भाई, आप मन के सब संगवारी मन संग में पहुंचा थन, सुनिया ए गीत मन ला कड़ार गांव में, और आपन फोन करे हैं ते कर लिए, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: ए गीत ला सुनावत है परसराम यदु और एलिस जॉन।

मुर्रा तांदा पूसा यानी बानी के खई खजानी खोआ पेड़ा बर्फी दे के आही तोर मुहमा पानी भीड़ भाड़ बाजार रही थे हाथ धर मुर्रानी लागे तो नजर कखरो।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम आए संगी, आप मन के स्वागत है। कहाँ ले बोला था, कौन बोला था आप मन?
1: योगेश जांगड़े बोला था, भी आशीर्वाद बांधा बने था ना।
0: योगेश भाई, कार्यक्रम में बहुत निक निक स्वागत।

0: है भाई, गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है।
1: हाँ धन्यवाद भैया।
0: अब बताओ काका, कैसे कैसे मौसम है, कैसे हाल तेरा बताओ। पानी कांजी कतका
1: मौसम
0: गिरा
1: तो
0: थे।
1: बने थे, बदली ढके रहते भैया, फिर बरसात अभी एक हफ्ता हो गए, नहीं हुए है
0: ऐसे एती तो बने
1: जी।
0: पानी गिरा थे झमाझम, और काफी। और खेती किसानी के बूता है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप मन के डहर
1: अब
0: कतकतार।
1: इधर ही तो थोड़ा पछुआ गया भैया, दूसरा साल ले, अभी अभी ते दो सब जरिया वगैरह डाले हैं, नारी वगैरह नहीं बन पाई तो
0: अच्छा,
1: कर
0: लहिहरा।
1: वादो।
0: हाँ,
1: हाँ हाँ बस
0: लहिहरा
1: बस
0: पद्धति
1: लहिहारा।
0: से
1: हाँ
0: आपने लगा था,
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया है।
1: हाँ
0: चलो ठीक है भाई, अब आगे पानी गिर ही, ऐसा तो नहीं है सब कति फैला थे।
1: नहीं उम्मीद हवा भैया, अभी तो मोबाइलों में भी
0: अरे
1: देखे हम तो बतावा थे काली ले थोड़ा बारिश। हाँ
0: चलो बढ़िया है। और एक अलावा बताओ, रेडियो के कार्यक्रम मन ला तो आप मन लगातार सुनत रही था, कौन कौन कार्यक्रम कैसे कैसे लगते आप मन ला।
1: बढ़िया लगते भैया, ये तो
0: ए तुहर
1: अपन
0: गोट
1: युवा
0: हमर
1: जगत
0: गीत कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप मन ला, ये बताओ।
1: सबले बढ़िया भैया। छत्तीसगढ़ी गाना जिन लोक संगीत बसते ओकर एक अलग ही आनंद रही थे, जबकि
0: सही कहा था आपने,
1: हम अपन मया अपन बोली भाखा ले करथन
0: बिल्कुल।
1: वो काफी बढ़िया लगते। हाँ
0: अपन माटी के खुशबू ही कुछ और है का देवा।
1: ये भी अभी मैं खेते आए हूँ भैया, खेते ले आप ले गोड़ बात करा था।
0: अरे वाह भाई, मतलब देखा आपके आसपास कोयली मन के बोली जो है तेहु मोबाइल के जरिए
1: हाँ
0: देखा यहाँ तक पहुंच गए, और
1: हाँ
0: बढ़िया लगे से आपसे बातचीत करके। योगेश भाई एठाओ सुनैया
1: हाँ
0: संगवारी लाइन में है, ओकर से गुड बात कर
1: हाँ
0: लेथन, तेकर
1: धन्यवाद
0: पिछू एठन
1: भैया।
0: एक सही गीत सुनाओ आप मन ला। धन्यवाद। तुहर गोठ हो हमर गीत कार्यक्रम में, अपन सुनैया संगवारी के स्वागत करथन। कहाँ ले बोला था संग।
1: नमस्कार, वंदे मातरम, मदन पांडे भाई सावला, अमर वंदे मातरम जी।
0: वंदे मातरम संगी, बताओ सब सुनिए संगवारी मन, आपके आवाज ल तो पहचानते हैं भैया, आपके नाम ल सुनना चाहते हैं, आपके गांव के नाम ल भी सुनना चाहते हैं भैया, बताओ।
1: हाँ भैया, मैं बिलाई माता के अचरा में रहता हूँ, रामचंद्र माखीजा काफिर भाई है मोर नाम, और बनिया पारा धमतरी है मोर गांव।
0: रामचंद्र भैया, कार्यक्रम में आप मन के गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है भाई, और हरियर हरियर स्वागत है चारों कति, धरती मैया भीजे है बढ़िया भाई। अब बताओ आप मन डहर मौसम कैसे है, पानी कतका गिरत है
1: मौसम
0: खेती
1: भैया
0: पानी।
1: आपके शुभवाणी है तो शुभ ही शुभ होते, अभी बूंदा पानी चालू है, पहले नहीं होत रही,
0: अच्छा
1: अब घंटे
0: अच्छा
1: बाजे सब मौसम में चालू हो गए जी।
0: चलो बहुत बढ़िया है, इसी तरह से आनंद
1: साहे
0: हो।
1: प्रेम के बूंद जो टपकते आसमान से बादल में बरसाते, तो
0: जी
1: दिल के छाती में करेजों में ठंडकता थे,
0: बिल्कुल सही
1: आप मन से
0: कहा
1: गोठियात बरसात गिरत है तो खुशी है भाई, और
0: चलो बढ़िया
1: इनमें
0: है,
1: कृषक मल्ला तो बहुत फायदा है,
0: बिल्कुल
1: अनिवार्य है, जरूरी है, काबर बरसात नहीं हुई तो जीव उत्पत्ति नहीं हुई, अनाज नहीं हुई, फल
0: बिल्कुल सही कहा था,
1: पौधा पेड़ पौधा नहीं हुए, ओकर बार पानी बरसात गिरने जरूरी मदन पाने भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ओकर लिए उतके मात्रा में खेती किसानी जतका हम यही देथन महत्व देथन, तत्का ना वृक्षारोपण लग हला महत्व देना है, और संग में
1: हाँ
0: कहा
1: वो
0: अभी
1: तो वही जरूरी है ना, वो
0: अभी
1: पेड़
0: मौसम गलत,
1: पौधा मन बरसात ला अवशोषित करते, जरूरी
0: बिल्कुल अभी मौसम भी
1: पेड़
0: बढ़िया
1: जमीन
0: है,
1: में जाते, पानी अवशोषित होते, तो
0: बिल्कुल अभी समय,
1: जल पेयजल की समस्या भी हटते। हाँ
0: हाँ समय है अभी बहुत उचित है, अनुकूल मौसम है, जतका भी हो सके अपन आसपास में फलदार वृक्ष लगाएं, घना वृक्ष लगाएं।
1: हाँ अभी तो ये मौसम जो बरसात के है, मैं पहले बचपन में जवानी में लगाते रहे हूँ, अब बाड़ी रहे हमारे यहाँ तो आम वाला काट के खान, और वाला जूठा वाला नहीं है ना, वो
0: हाँ
1: ककड़ी ला नहीं, वो फिर वो ककड़ी ला इकट्ठा करके हमें जमीन डाल बढ़िया हो जाए,
0: हाँ
1: 10-15 दिन में फिर वाला निकाल के आजू बाजू सड़क किनारे लगाऊ, पहले जमाने में साइकिल
0: बिल्कुल
1: में धर के। हाँ
0: बिल्कुल, जंगल क्षेत्र की ओर जाएं तो जब का बीजा बीजा सकेले फल फ्रूट के देला, एती ओती बिखेरते जाएं ताकि वह अपने अपन मौसम के हिसाब से जाग जाते हो।
1: हाँ और एक गांव के बाद निकले हैं पेड़ पौधा के, तो हम जब कॉलेज पढ़ा रहे हैं किसी कैडेट के साथ रहे हूँ,
0: हाँ, अच्छा
1: जस्ट
0: अच्छा
1: गंगरेल के साइड में लगा रहे हैं,
0: बहुत
1: फॉरेस्ट
0: बढ़िया,
1: विभाग डिपो है या जो भी, तो लगाए बोल बोले तो वहां लगा।
0: अपन लगाए पेड़ ल बड़े हो देखिए तो कतका खुशी और आनंद मिलता है।
1: हाँ तो वही जब जाता गंगरेल से देखते ऊपर चढ़ाव के ऊपर बाजू में लगे हैं तो मन में खुशी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा था रामचंद भैया, आपसे बातचीत करके
1: हाँ
0: बहुत प्रेरणा मिली, सब अच्छा लागिस, निक लागिस,
1: वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम भैया। ये गीत में स्वर है चतुर राम साहू और गीता भट्ट और कांति भट्ट के, सुन लेवा अपन सब संगवारी मन से।

एनिक सही कार्यक्रम ल आप मन तक पहुंचाए में हमन ल कुशल तकनीकी सहयोग दिन है गौरी शंकर कौशिक मन। अब एकरे संग हमर जाए के बेरा हो गए है। कार्यक्रम के अगला अंक में आबो त गाड़ा गाड़ा गुड बात करबो। तब तक मैं दयाला अचरा में गठिया के रखिया। राम राम, जय जोहार।

0: तुम्हार गोठ हमर गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति थी मदन पांडे की। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, 22 को की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर

0: बॉम्बे टॉकीज
1: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
2: मुझे याद सब है जरा जरा।
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
4: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है दतरेंगी से जगदीश प्रसाद साहू, मनोज कुमार, सूरज साहू और रामजी वर्मा ने। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन। चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी और रौनक सेन। दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से मुकेश, रोहासी से डगेश्वर राम साहू। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता और कृष श्रीवास्तव। लाहौद हटौद बाजार से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल। बेलरगांव सिंहावा से मिथिलेश और मधु देवांगन, साथ में है हिमांशु अंकित देवांगन। बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। सारागांव चटौद से सुजान सहोद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है शोले फिल्म का ये गीत।

आपने सुना शोले फिल्म का गीत, स्वर लता मंगेशकर का था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था, आर डी बर्मन का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल, भूपेंद्र, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, मोहनपारा अकलतरा से अभिनव और अभिषेक साहू। भाटापारा से हमारे श्रोता हैं बचका मल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, हरीश वर्मा, नारायण यदु, लेखराम, राधेश्याम, लतेल साहू, शियाराम और अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा, हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम, भुवनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार हाव्या और टानिया रजक, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, पलारी से प्रकाश, निखिल, प्रिंस और यशस्वी वर्मा, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। आप सभी साथियों ने सुनना चाहा है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में जावेद अख्तर का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।

0: शंकर पांडे से लीजिए सुनिए बिलासपुर जिले का आज का ट्रैफिक अपडेट। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सर्व समाज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा आज राम मंदिर तिलक नगर से गौ सम्मान आह्वान अभियान शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम मंदिर से प्रातः 10 बजे यह शोभा यात्रा चलकर मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिए जाने की योजना है। वहीं 3 दिवसीय श्री राम श्रद्धा यात्रा के आज तीसरे दिन रामकृष्ण मंदिर कोनी से यात्रा दिन के 11 बजे प्रारंभ होगी, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय आईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बूढ़ा देव मंदिर बिरकोना अटल चौक श्री राम चौरा माँ मावली देवी मंदिर बिरकोना माँ महामाया मंदिर से बैमा बस्ती होते हुए ग्राम नगोई वैष्णो देवी मंदिर में संपन्न होगी। उपरोक्त दोनों ही यात्रा में चल रहे सभी सदस्यों से अनुरोध है, सड़क में इस प्रकार चलें कि सिर्फ आपसे ही पूरी सड़क व्यस्त ना हो, सड़कों में चल रहे औरों को भी पर्याप्त स्थान मिले, कहीं भी यातायात बाधित ना हो। एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के साथ ही सभी वाहनों को तत्काल साइड दे दें, शहर की सुगम सरल यातायात व्यवस्था के भागी बने। इसके साथ ही गांव से लेकर शहर तक अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, ठंड वर्षा गर्मी सभी ऋतुओं में विकास कार्य का अनवरत रूप से चलना बिलासपुर जिले की फितरत बन चुकी है। अनेकों स्थानों के साथ ही इस समय तिफरा चकरभाठा अर्थात माननीय हाई कोर्ट तक मुख्य मार्ग के किनारे बड़ी नाली का काम चल रहा है, कहीं कहीं पुरानी नाली से मलबा भी निकाला जा रहा है। ये सभी निर्माण सामग्री आदि सड़क के किनारे रखी है, जिससे सड़क संकीर्ण हो रही है, जबकि सड़क में वाहनों की संख्या अधिक है, इसलिए यहाँ से आते जाते समय पूरी सावधानी से चलें। इसी प्रकार शहर के अंदर कई स्थानों में सड़कों में पुराने डिवाइडरों को तोड़कर ऊंचे बड़े बड़े डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। यहाँ भी मलबा एवं गिट्टी राड आदि रखी है, जिससे सड़क संकीर्ण हो रही है। पूरी सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर अभी आपने सुना। अब फिर लौटते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद के अगले गीत की ओर। गीत की फरमाइश हमें की है भाटापारा से मिलव मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, नीलक्ष और विवान मानिकपुरी, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप सभी लुतरा खमरिया से, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और उनका पूरा माखीजा परिवार, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा दतरेंगी भाटापारा से, बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, नोकेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है पंकज उदास और साधना सरगम की आवाजों में इंदिवर का लिखा, विजू शाह का संगीतबद्ध किया, मोहरा फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। पोड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी, बबलू, सुमन, मिंटू, मिष्टी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा, अंशु साहू। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, ईशानी साहू, छनुलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास। रसीड़ा कलतरा से मुरली

गिरधर, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या डीकेश, वासु डाली और पूर्वेश साहू। भाटापारा से श्याम रतन, रचनाकार मुंगड़ा, रावण भाटा। भाटापारा से बबला यादव, रिखी राम और कमलेश्वरी यादव। अंबागढ़ चौकी परसाटोला से ओम प्रकाश, सिलोचनी, तुषारिणी और खुमेंद्र मसिया। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, अनस, सबीहा और रेहान। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल, तन्मय, बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। बोरसरा नैला जांजगीर से दुर्गा प्रसाद तिवारी, हेमदेव, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता, अमन कुमार, विष्णु प्रसाद, मोगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत।

अब्दुल्ला फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए के अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्न।

0: ओके, उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की, बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।

0: एक जंगल में अंगुली माल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
1: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
2: तुमसे कह रहा हूँ, देखिए, रखो, देखिए, मुझे छोड़ दो। साथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ दो।
0: वो उन्हें मार डालता था। वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया।
3: नाथ,
4: महात्मा,
3: प्रभु,
4: महात्मा,
3: प्रभु,
5: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुली माल है।
5: हाँ प्रभु,
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
6: प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: जाएं।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: खतरा है। ना जाएं प्रभु,
5: ना जाएं प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है। आप धैर्य

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहाँ?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: ठीक है।

0: हाँसी तोड़ लाए हो, फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगतीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये

0: देखकर आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियम

0: नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
0: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
0: जी,
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
4: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
4: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
4: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
3: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
5: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
4: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
4: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली।

0: में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहु भाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र दो पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली

0: राजेश्वरी सचदेव को आप सुन रहे थे एल्बम थी हुल्ले हुल्ला रे, नक्श लालपुरी के बोल थे अमर हल्दीपुर की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: हीरा का मोहन इस फिल्म का दो गाना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इंदिवर की रचना थी अरुण पौडवाल की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

11:55 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इसके प्रमुख जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इस विधेयक को लोकसभा की आज की कार्यसूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्टैग अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सीआरपीएफ के वीर जवानों के शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को नमन करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि चाहे नक्सलवाद का खात्मा हो या देश की शांति और प्रगति की रक्षा करना, बल ने हमेशा राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी कैंपस में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रालय में विभिन्न कार्यालयीन कार्य और प्रशासनिक बैठकें करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि सिंधी समाज स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि विभाजन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिंधी समाज ने अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्यपाल कल रायपुर में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित मुख्य संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 128 सिंधी पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वह अवदाब में बदल गया है, जिसके असर से बारिश हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉ अब्दुल कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनका निधन 2015 में आज ही के दिन हुआ था। कांकेर जिले में बीते दो दिनों में मलेरिया से दो छात्रों की मौत हो गई है। मामला इरादाह और मर्दापोटी छात्रावास का बताया जा रहा है, जबकि इसी जिले के 11 छात्र मलेरिया से पॉजिटिव पाए गए हैं। मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। इसके प्रमुख जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी होंगे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103

0: 2.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदक की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: इंटर बाबू। इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, कमर जलाला बादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं, लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाजें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाजें थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: बप्पी लाहिरी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोता। मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी हिंदी वर्ग के बोल मुकेश की आवाज फिल्म सफर का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए श्रोताओं आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और भेज सकते हैं आप इस पते पर अपने कमेंट्स अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ चुके हैं श्रोताओं, तो अपने रेडियो श्रोताओं के लिए और सभी श्रोताओं के लिए एक बार आज की इबारत पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो कार्यक्रम है हमारा वो इबारत पर ही बेस्ड है। तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं और गीतों को कुछ चुनकर भी भेजा है। तो ये है आज की इबारत, वो बूंद फूल सी आसमान से चली जो कमर से कभी तो कभी सितारों से पूछा कि जमीन से मिलन कैसा होगा, मोहब्बत की कसम खाई है जो सीप से वो मोती सा बदन कैसा होगा, चेहरा शीशे का आंचल पानी का दिले बेताब ये जिंदगी का सफर कैसा होगा, कभी जमीन को देखूं तो कभी चांद को मौसम हिमाकत कहे जो मेरे इम्कान को, बदरा छूटा सफर की रात हुई दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर बर्बाद होने की चिंता बेकार थी, कुछ यूं ठहरी मैं सीप में कि बूंद से मोती बन तैयार थी। तो आप सभी ने बहुत सारे शब्द भी भेजे हैं श्रोताओं, गीतों को भी चुनकर भेजा है और आपकी रेडियो सेट पर बिल्कुल शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

इस गीत के कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओं और गीतकार बताने हैं। एक श्रोता हमारी लिखती हैं कि आज के इस खूबसूरत और काव्यात्मक गद्यांश का मुख्य विषय है जीवन की अनिश्चितताओं से गुजरकर आत्मखोज, धैर्य और रूपांतरण का सफर। ये पैराग्राफ एक संकारात्मक सकारात्मक संदेश देता है। ये बताता है कि जीवन का सफर भले ही अनिश्चितताओं, डर और मुश्किलों से भरा हो, लेकिन अगर आपके भीतर धैर्य है तो आप हर चुनौती को पार करके अपने जीवन को सार्थक बूंद से मोती बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों को भी चुना है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज की इबारत बारिश की बूंदों की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। बारिश की बूंद की यात्रा के माध्यम से जीवन का गहरा संदेश देती हैं। उसी तरह आसमान से गिरती भी बूंदें अपने भविष्य को लेकर उत्सुक भी हैं और अनजान भी। अनेकों गिरती बूंदों को अपनी मंजिल का पता नहीं होता। रास्ते में बादल बिछड़ते हैं, पत्थर मिलते हैं, अंधेरी रातें आती हैं और कई बार लगता है कि सफर यहीं थम जाएगा, लेकिन हर बूंद का नसीब ऐसा नसीब मिट्टी में खो जाना नहीं होता। कुछ बूंदें सीप की गोद में ठहरती हैं और समय उन्हें मोती बना देता है। इसलिए सफर की मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमारी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंद जो बन गई मोती, बादलों के आशियां से बिछड़ बूंदों का जमीन तक का सफर की दास्तां बयां करती इबारत अपनी खुशकिस्मती बदकिस्मती की सूरत हाल पर चिंत सफर का अंत तह मंजिल सीप में आश्रित हो संतुष्टि सह सुखांत हुई। बूंद का ये सफर नामा होना चाहिए। इंसानी दिनचर्या को संदेश दे जाती है। विघ्न बाधा सामयिक होते हैं, मनोबल से मंजिल देर सवेर जरूर मिलती है। तो आप बता सकते हैं कि आपकी मंजिल क्या थी और क्या आपको मंजिल पाने में कोई कठिनाई सामने आई। वैसे मंजिलों की राह कठिनाइयां तो बहुत सारी आती हैं। बूंद पर अगर कोई कविता आपने पढ़ी है या आपने खुद लिखी है तो आप हमें बता सकते हैं श्रोताओ। और इस गीत में आपको कलाकार भी बताने हैं और संगीतकार बताने हैं।

श्रोताओ, आपके शहर में बूंदों का क्या हाल है, यानी बारिश का क्या हाल है? बारिश हुई कि नहीं? वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमारे वाराणसी में यानी बनारस में तो बारिश नहीं हुई, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एक छोटी सी बूंद जब आसमान से उतर कर सीप के भीतर समा जाती है तो समय के साथ वही बूंद एक अनमोल मोती बन जाती है। ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष, इंतजार और धैर्य के बाद ही असली निखार आता है। बूंद से मोती तक सफर दरअसल उम्मीद, मोहब्बत और जिंदगी के खूबसूरत बदलाव का सफर है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि सीप ने बूंद से उसकी मंजिल नहीं पूछी, बस उसे अपने भीतर जगह दे दी। शायद रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जहां अपनापन मिलता है वहीं रहकर वो अनमोल बन जाते हैं। जी हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है श्रोता। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि कौन से हैं कलाकार, जी हाँ, वैजयंती माला और देवानंद साहब नजर आते हैं इस गीत में। ज्वेल थी फिल्म का गीत था, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। और आरजू फिल्म के गीत में गीतकार थे हसरत जयपुरी, राजेंद्र कुमार और अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया गीत हमने आपको सुनवाया था। और एक सवाल और है आपसे कि आजकल बारिशों में एक फूल बड़ा नजर आता है श्रोताओं, और वो फूल क्या आपने देखा है? हमारे यहाँ तो इसे गुल मेहंदी का फूल कहा जाता था और हर जगह ये दिखाई दे जाएगा बारिशों के मौसम में। क्या आपने देखा है? वैसे कई रंग में खिलता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर देखा हो या आपकी बगिया में अगर है तो आप बता सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब बूंद आसमान में है तो उसमें जिज्ञासा भी है और अनजाने का डर भी। दलदल पत्थर निर्जन बसेरों पर गिरकर ये हमारे जीवन

की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम किसी नए मोड़ पर कदम रखने से डरते हैं, कहीं हम बर्बाद न हो जाएं। जब हम अज्ञात के डर को छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो जीवन की चुनौतियां हमें नष्ट करने नहीं बल्कि हमें निखारने और मोती बनाने आती हैं। जी हाँ, कष्ट तो होता है, बहुत सारी जो रास्ते में अड़चने हैं वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी आगे का रास्ता यानी सफर तो जारी रहता है। यही हाल बूंद का है और हम सबका भी। आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओ और संगीतकार।

मशहूर फिल्म का गीत आपने सुना, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी, और इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उन सभी श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो कार्यक्रम में नए जुड़े हैं। एक श्रोता ने हमारे लिखा है कि बनारस में छिटपुट बादल बरस रहे हैं और सुरीला सफर में फिर बारिश होने की संभावना है। जी हाँ, संभावना है, लेकिन देखते हैं कि बरसते हैं या नहीं। तो इन्होंने गीत भी पसंद किया है, दो सितारों का जमीन पर है मिलन, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा जिंदगी का सफर, तमाम गीत। एक और हमारे और श्रोता लिखते हैं कि मैं एक शेर पेश करता हूँ अपने श्रोताओं की नजर करता हूँ। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया आकाशवाणी मुंबई को घायल बना दिया। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे सब यानी हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे अपने अपने शहरों में। एक हमारे और

श्रोता लिखते हैं कि रेडियो से मुझे बहुत प्यार है, ये बचपन से ही रेडियो मैं सुनता हूँ। 30-35 मोबाइल को खराब कर दिया है, सुबह से चालू करते हैं तो रात के 12 के बाद ही बंद करते हैं। लव यू रेडियो, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भाई 30 से 35 मोबाइल आपने खराब कर दिए हैं, क्या कह सकते हैं। रेडियो विविध भारती भी आप सभी के संग है श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमान की असीम गहराइयों से शुरू होकर धरती की प्यास गोद तक का बारिश की बूंदों का सफर प्रकृति का सबसे सुंदर और जीवंत काव्य है। गहरे कजरारे बादलों के झूलों में बूंदों का बचपन पलता है। जब बादलों का सब्र टूटता है तो ये नन्ही बूंदें अपनी अनंत यात्रा पर निकलती हैं। आसमान से नीचे आते हुए बूंदें हवा के अदृश्य हाथों में हाथ डाल कर थिरकती हैं। कभी कभी तो ये बूंदें आसमान में सूरज की किरण से सतरंगी इंद्रधनुष की खूबसूरत चुनर ओढ़ लेती हैं। वो पहाड़ों, नदियों, पौधों, सीप और सागर की जड़ों में समाकर एक नए जीवन को जन्म देती हैं। आसमान का ये अनमोल उपहार धरती को समृद्धि का वरदान देकर उसी में लीन हो जाता है। दो बातें इसमें है श्रोताओ, आप उसका जवाब दे दें तो क्या ही अच्छी बात है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, बारिशों में क्या इंद्रधनुष आपने देखा है तो आप हमें बता सकते हैं। और एक और है बात ये कि सीप में मोती बंद होता है, लेकिन मोती क्या आपको पसंद है और वो कौन सा पक्षी है जो बारिश की बूंदों के लिए तरसता है और बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब पानी मिलेगा पीने को। कलाकार अगर आप पहचाने तो बता सकते हैं श्रोताओं।

मुमताज पर फिल्म आया गया। ये गीत आप सुन रहे थे गबन फिल्म से। एक श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरती पानी की बूंदें पहाड़ों पेड़ पत्तियों से टकरा कर धरती में समा जाती हैं। प्रकृति का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। सीप में गिरी बूंद चमकती मोती बन जाती है। हमें ये सिखाती है रास्ते में आए हर एक मुश्किलों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की बूंदें हमें एक अनमोल सीख देती हैं। वे जितनी ऊंचाई से आती हैं उतनी विनम्रता से धरती में समा जाती हैं। न कोई अहंकार न कोई शोर, बस चुपचाप हर सूखी जिंदगी में हरियाली और उम्मीद बो जाती हैं। अगर ये बूंदें अपने बादलों से बिछड़ने का साहस न करती तो शायद धरती कभी इतनी हरी भरी न होती। कभी कभी जीवन में बिछड़ना भी नई शुरुआत का कारण बन जाता है। यही अनंत सफर बादल से धरती, धरती से नदी, नदी से सागर और फिर सागर से बादल, सफर चलता रहता है, कभी थमता नहीं। मुझे एक बात बताइए श्रोताओं, क्या आपने ओस की बूंदें देखी हैं और क्या इन्हें पत्तों पर कभी छुआ है? तो जरूर बताइए। एक और श्रोता लिखती हैं कि बारिश के मौसम में बादल आसमान में छाए हों और बारिश न हो रही हो, तब भी बूंदों का एहसास मन में बना रहता है। जादुई भी है बारिश, संगीत ले आती है, धुआं धुआं सा आसमां बना देती है, बादल भरे भरे गगरी सी छलकाते प्रतीत होते हैं। और ऐसे में मन का हाल न पूछो, मन तरल हो उठता है। पिघलते आसमान धरती को कितने सुकून से भर देता है, ये तो हम चारों तरफ की हरियाली देखकर जान जाते हैं।

जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओं, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें जरूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो जरूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो। बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतजार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नजर आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहां खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदे भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे पपीहे के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, प्रातः बहुत बार पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल रहती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इंद्रधनुष का दूसरा नाम भी है मेघ धनुष। स्वाति नक्षत्र 22 तारीख से बैठा है, इनका पानी अमृत समान होता है। थोड़ा संचय कर सकते हैं तो करें, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शीशे की बोतल में भर कर रखिए, ऐसा ये कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है, और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं, और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं ने लिखा यह गीत था। राजन कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूट कर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसी संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदे दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाए जब नन्ही वर्षा की बूंदे चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए किस फिल्म का है।

फिल्म मधुमति का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता धीरे धीरे से चलो मेरी बाकी हिरणिया, और तमाम गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों पर बने रहने की चाहत को त्याग बूंद धरती का रुख करती है, जो किसी भी देवदूत से कमतर नहीं होती, उन्हें भी ये ज्ञान भली भांति रहता है कि एक बार ऊंचाई से नीचे आते हैं उनका मौलिक अस्तित्व बदल जाएगा। कोई बूंद कहीं किसी छातक की प्यास बुझाएगी, किसी बूंद को सीप अपने में संजोकर अनमोल मोती के रूप में उस बूंद का कायाकल्प कर देगी। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफर पर, तो जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं और क्या ऐसा सफर आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफर पर हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्कुरा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि एफएम पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सरक कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द

पा लेते हैं क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

0: के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए, जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।
1: पापा।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू।

0: अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षा

0: में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
1: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाए। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटॉक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
3: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े

0: सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे, साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार, और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
1: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
0: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई, हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं, और दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं।
1: प्रेम जितना भी और स्वास्थ्य भी।
0: बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से, और अब क्योंकि बारिश का मौसम है यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है, कुछ गर्म हो जाता है।
1: गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता है या हमारी बहन कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की, और अब बारिश का मौसम है तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
1: हाँ,
0: उन चीजों की हम बात करेंगे।
1: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं तो उस वक्त आप अपना बचाव कैसे करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
0: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है, लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो जिसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
1: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
0: हाँ,
1: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है।
0: बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, इसकी बहार ही बहार होगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
0: हाँ,
1: इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा।
0: हाँ,
1: इस बारे में जरूर बताइएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
0: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की, विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं। लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
1: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
0: कहानी का। हाँ, तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
1: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी।
0: ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है।
1: चलिए

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी है।
2: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।

0: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए हैं नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा, फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
1: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
0: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
1: मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
0: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
1: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
0: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
1: अच्छा, स्वीकार है, 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
0: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं। इतनी, बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
1: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
2: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहां अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई, ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है, मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,
0: यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है।

0: इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हाँ, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
1: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
0: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
0: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
2: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है। पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
2: चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं

0: आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं, क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
1: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
2: चाचा, बापू से ये हाल कहां है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और दो दो तीन तीन दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
2: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
2: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
2: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
3: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
4: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा, और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
5: बिल्कुल।
4: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
5: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियां यहाँ बैठे, कि अगर जीवन में भरोसा ना हो ना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो,
0: हाँ
1: तो ये अगला जो जो 1 घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप
0: बिल्कुल।
1: सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
0: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे, और वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं,
1: जी
0: लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है, और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा कर

0: करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें,
0: बिल्कुल सही
1: है ना?
0: कहा।
1: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
0: हाँ
1: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर।

0: में स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
1: हाँ,
0: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
1: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से।
1: हाँ।
0: और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है, तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: ये तो बात सही
0: बल्कि
1: है।
0: कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
1: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आईं और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं होता है ना।
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों,
1: बहुत सही बात कही
0: है ना,
1: तुमने।
0: या
1: हाँ?
0: फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हुआ।
1: हाँ,
0: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
1: भरोसा, यानी विश्वास। बहुत सही
0: हाँ,
1: बात कही
0: और
1: तुमने।
0: जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा, बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे भी भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा या माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जब हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
0: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
1: तो बिल्कुल, हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
0: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
1: हाँ।

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो
1: जी
0: वाकई दुख पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती
0: और
1: है।
0: उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो हमें वो बहुत भरोसेमंद समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे
0: बहुत
1: की।
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ ऐसे शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखरते हैं।
1: बहुत कहते ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनाकर बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने

0: जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसने हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा। पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
1: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
0: बिल्कुल,
1: एक संदेश
0: और बहुत
1: में
0: सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसे एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारे ये श्रोता कहते हैं ये सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए, इसका ख्याल रखें। बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
1: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है, तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग 1 गड्ढी, पालक 1 गड्ढी, बथुआ 1 गड्ढी, मेथी 1 गड्ढी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है, और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3, और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर, और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें, और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें, और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमे आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है, और इसे थपथपा कर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो आप अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा
1: आसान हो जाता है, और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं।

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार, नमस्कार।

0: सेहत नामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
2: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था, काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो

0: आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
1: जी
0: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
1: जी
0: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: शुक्रिया एक बार
1: जी
0: और।
1: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
0: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
1: ओके
0: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली,
1: हाँ
0: और मैंने बीएससी भी लिया था। और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
1: ओके
0: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको खत्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूं पहले साल तो काफी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि
1: जी
0: एनवायरमेंट बहुत अलग रहता है, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
1: जी
0: पहले
1: जी
0: साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको 1 साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी जिंदगी के साथ या किसी भी चीज, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आंख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए, खुद की
1: जी
0: प्रैक्टिस 30 साल हो गए। तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूं अभी तक इसके अंदर।
1: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
0: जो टिपिकल टर्म है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
1: जी
0: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
1: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
0: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले जमाने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आंख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविजन तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज्यादा आंख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम है, आंख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आंख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज्यादा, पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
0: जी
1: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
0: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज्यादा ध्यान दे के देखते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आंख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आंख को गीला रखता है, और हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है।

0: जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो किकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूं कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आंख, एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए,
1: कोई फॉर्मूला बताया गया
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक दो मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है।
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो LED है, पहले LCD थे
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक LCD स्क्रीन्स थे, अभी LED स्क्रीन्स आए हैं और LED स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है
1: जी।

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सरदर्द देने चालू होते हैं। सो सरदर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सरदर्द के लिए।
0: अच्छा,
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी, बच्चों में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी,
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
0: ओके,
1: आप समझिए, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, आप शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल
1: होता है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती
0: वो भी थक जाती है
1: जी।
0: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा। तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिरदर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
1: नहीं नहीं, आंखों में सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी,
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
0: जी,
1: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं, बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं।
0: जी जी,
1: ग्लोकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
0: अच्छा,
1: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आंख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आंख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि उस बीमारी में वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
0: जी जी,
1: ग्लोकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है, अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
0: ओ गॉड,
1: तो जी, क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है, वो दिमाग का हिस्सा है। दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा,

0: धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है,
1: ओके,
0: कि आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है,
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई,
0: रोशनी गई।
1: एक उम्र के बाद
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए।
1: उसका और फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी,
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं, जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
1: जी बिल्कुल,
0: ये,
1: बिल्कुल,
0: ये सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस,
0: कॉमन सेंस है।
1: तो 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
0: 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं,
0: संभावना 50% है माता के साइड से या पिता के साइड से।
1: जी जी,
0: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहां पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
1: जी,
0: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहां से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहां से आ गया।
1: सही बात,
0: कई मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
1: पूरे फैमिली ट्री।
0: बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है हमको, विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीजों में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए। सिंपल,
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: एक
1: उम्र के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
1: जी।
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
1: जी।
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूरी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शन आ गए हैं
1: जी जी।
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
1: जी,
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
1: जी।
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
1: जी,
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: एग्जैक्टली,
1: ये दे रहा है मैं लूं कि नहीं।
0: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं
1: जी,
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं है,
0: डॉक्टर नहीं है जी, ऑप्टोमेट्री

0: एक अलग कोर्स है। हाँ वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट, वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है। मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपके आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आंख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है
1: जी,
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहां पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मेरे हिसाब से तो आंख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, ये सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं। ये जो है ये मुसीबत की जड़ है, इससे बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन, हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता
0: जी,
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है, वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर।
0: देखिए, ये एक साइंस है
1: जी,
0: जो आंख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आप, और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत जरूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं।
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का है, 50 साल पहले का कंसेप्ट है।
1: जी, जी जी,
0: लेकिन अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम, हम चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं
1: जी,
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारी
0: और काम रहते हैं उनका भी, तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे नहीं बोल सकते कि आप घर बैठ रहे हैं तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें आंखों की हो रही हैं तो गाने भी आंखों के होने चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ गाना सुनते हैं।
0: ओके, जरूर,
1: है ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी फिल्म का नाम, 9-2-11।
0: बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम आजकल बच्चों को काफी आंख के प्रॉब्लम्स के लिए जल्दी पकड़ रहे हैं, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है पेरेंट्स में।
0: जी, कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

उसकी वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट इज वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज है, देखिए, देखने के लिए अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नजदीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट.

0: या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नजदीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज्यादा नजदीक ले रहा है। ये दूसरी चीज है टीवी के नजदीक जाना या तो बहुत नजदीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज है काफी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फर्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज। एक आंख बाहर जाते हुए,
1: जी,
0: तो ये जो है अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है।
1: और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर

0: जो है अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत जरूरी है।
1: जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी।
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है, जो कि बीच की किकी रहती है, उसमें कोई सफेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आंख में कोई जरूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
1: जी, कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूं, तिरछी आंखें जो है, जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज्यादातर, कमजोरी की वजह से भी होती है। अगर दोनों आंख में से किसी आंख के मसल्स कमजोर हो तो वो आंख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आंख को सीधी की जा सकती है,
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना
0: जी
1: चाहिए और वो तमाम चीजें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीजें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं,
1: जी
0: वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता। एक नॉर्मल पोषण बहुत जरूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में, किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं। आप
1: बिल्कुल
0: कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
1: बिल्कुल
0: जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए, इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत जरूरी है, जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए, बंबई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
1: विद्वान
0: सभी
1: लोग हैं
0: बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे।
1: जी।
0: अब बीच में ही मैंने कहां पे एक पोस्ट देखी थी जहां पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियां ऐसे रगड़ो तो आपके आंख का नंबर चले जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि डॉक्टर साहब अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे, मतलब कर लगे रहो, बोला कितना टाइम, बोला लगे रहो आप ही, आप मुझे आके बताओ। तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आहार लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, GM डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आपको और कोई डाइट की जरूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप ज्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ
1: बिल्कुल
0: हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते
1: जी
0: हैं, जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां।
0: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन

0: देता हूं। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट।
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लुक जरूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके। माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
1: जी जी जी
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो
1: जी
0: पहले तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, अब कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है। ऐसे नहीं है, जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आजकल का एनवायरमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है आंख का नंबर आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है, वो आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल। तो
0: आप
1: फिर
0: समझे?
1: आप
0: तो
1: इस
0: ये
1: पे भी सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है। सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है? जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल।
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं
1: जी
0: और ये उल्टा साइंस है। जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर
0: वो
1: बनेगी।
0: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए
1: बिल्कुल
0: शेप और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं
1: बिल्कुल।
0: कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर्स। दोबारा देख
1: यस
0: लीजिए जो मैं कह रहा हूं, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज है, नजर अलग चीज है।
1: जी
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नजर पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो हैं बेचारे उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है।
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आंख की,
1: जी जी जी
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल।
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं, इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है बिकॉज लोग काफी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है। और ये मुझे 15-20 साल पहले ज्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है? बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो।
1: बिल्कुल।
0: मैं तो ऑलवेज कह रहा हूं इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दृष्टि।
1: बिल्कुल।
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी
0: जी
1: चाहिए। अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना
0: और
1: चाहिए।
0: 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए,
1: जी
0: क्योंकि बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है।
1: जी
0: ये
1: जी
0: ग्रोथ, जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, बड़े नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं। वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि चश्मा हटाया जा सकता है?
1: तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है।
0: जी
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी
1: उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी हो, कोई और बीमारी हो उसके वजह से। उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक। क्योंकि जब तक के आंख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेजर या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20 18 की और उसके बाद उसके आंख का साइज चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है।
0: अच्छा
1: उसका एक कैलकुलेशन है और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है तो नंबर कम हो जाता है।

0: निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेजर है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफी जांच पड़ताल करना जरूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा, 2 साल तक नंबर स्टडी रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर आपका लेजर कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर सामने की कांच पतली हो
1: तो
0: और
1: नहीं कर
0: लेजर
1: सकते।
0: हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज है, आगे आपकी दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
1: ओहो
0: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो
1: जी
0: जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
1: करेक्ट।
0: तो वो भी जांच करना जरूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीजें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेजर के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है, एक उम्र के साथ आपके आंख में बदलाव आएगा ही। 45 के बाद नजदीक का नंबर आएगा तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हो, अगर 20 पे आपने करवा लिया तो।
1: जी
0: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफी टाइम लेजर होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना जरूरी होता है। कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज्यादा नंबर हो, काफी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है।
1: जी
0: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे,
1: जी
0: आंख
1: जी
0: जो है तो वही है।
1: बिल्कुल,
0: हाँ,
1: सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा
0: उसका
1: है।
0: सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है,
1: जी
0: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
1: पर ये हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है।
0: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
1: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
0: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के ऑपरेशंस किए जाते हैं।
1: जी जी
0: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राइफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है,
1: जी
0: तो वो परमानेंट रहता है। लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफी टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं।
1: जी बिल्कुल
0: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत जरूरी है, कि जब ये आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे कि नहीं? ये ऑपरेशन
1: जी
0: है तो
1: जी
0: आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है। आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माई बॉटम लाइन टू एवरीबडी। जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया।
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है,
1: जी
0: और हम कितनी भी कोशिश करें तो, जैसे मैंने कहा, अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक पेशेंट का आंख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आंख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहां वहां है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं,
1: जी
0: बिकॉज इट इज नॉट अनफॉर्चुनेटली इट इज इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आंख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा
0: आंख
1: आपने।
0: तो, और आंख को तो सबसे इंपॉर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा कैसे? आंखों के थ्रू ही दिखेगा।
1: परफेक्ट बात है। यहां एक गाना सुनते हैं
0: जरूर।
1: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी
0: अरे
1: सपने
0: वाह,
1: सजाए।

0: दोस्तों आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा
2: अभी एक छोटा सा अंतराल।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CFO निभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये हरिहरपुर, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, गर्जनडी, सिंघरा, भरदा, करसी, नवाडी, पेंडारी, मकनपुर, पूर्णिपा, मसगा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जामदोहर, झींगा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, शिवपुर, चिनिया, महावीरगंज, परसवार, दुप्पी, चौरा, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, कामेश्वर नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, मानपुर, झिरमिटी, चोरकी पानी, बैडाण, बरवाली, कंडराजा, रानीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये गड़ाकटा, पंडरी पानी, चेटबा, मड़िया झरिया, सोनाजोरी, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 103 है। ये सिंघी छाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये बैगामार, जिलगा, करतला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और

0: अनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। महासमुंद वन मंडल के महासमुंद में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये नांदबारू, तालाझर, सुकुलबाय, खिरसाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी हम प्रसारित कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ अनुभाग सरगुजा। और अब समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म से आवाज़ें दी हैं सोनू निगम और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर की रचना, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें दी थी सोनू निगम और अलका याग्निक ने। जावेद अख्तर की रचना थी, संगीत शंकर एहसान लॉय का। और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं मोहित चौहान का गाया ये गीत। शब्द रचना है इरशाद कामिल की, संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है जब वी मेट।

मोहित चौहान की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। और इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को हमारे स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात में कंदवा चरनी एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा शरीर में होने वाले तिल व मस्तों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं

निदान की उपाय और इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का STD कोड 07752 अवश्य लगाएं। श्रोताओं, इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब अगला गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए, सुनिए एक दीवाना था इस फिल्म से। आवाजें हैं राशिद अली और श्रेया घोषाल की, गीतकार है टीमी, संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। और अब अगला गीत फिल्म लुटेरा से हमने लिया है। आवाजें दी हैं शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी ने। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से संवारा अमित त्रिवेदी ने।

और अब लीजिए सुनिए भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का ये गीत, आवाजें दी हैं श्रेया घोषाल और जावेद बसीर ने। प्रसून जोशी का गीत है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाजें दी थी जावेद बसीर और श्रेया घोषाल ने, प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम युवा जगत में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनों का काफी ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की बात में बात करेंगे मैंग्रीव पारिस्थितिक तंत्र की। बीते 26 जुलाई को पूरी दुनिया के लोगों ने विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया। साथ ही आज क्रम होगा मेरा शहर का, जिसमें हम सुनेंगे इस माह बिलासपुर में क्या क्या खास रहा। साथ ही साथ होगा प्यारे प्यारे गानों का। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज की चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र की जो समुद्र और भूमि के बीच प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र। मैंग्रोव एक ऐसे विशेष प्रकार के वन है साथियों, जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों, नदी के मुहानों तथा खारे और मीठे पानी के मिश्रित क्षेत्रों में उगते हैं। इनके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अत्यधिक लवणीय मिट्टी और ज्वार भाटा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी के ऊपर तक निकलती है, जिससे इन्हें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और यह दलदली भूमि मजबूती में खड़े रहते हैं। मैंग्रोव केवल पेड़ों का समूह नहीं साथियों, बल्कि यह जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। अनेक प्रकार की मछलियां, केकड़े, झींगे, पक्षी, सरीसृप और अन्य जीव अपना जीवन इन्हीं वनों पर निर्भर होकर बिताते हैं। इन्हें समुद्री जीवों की नर्सरी भी कहा जाता है साथियों, क्योंकि अनेक मछलियां अपने जीवन की शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों से करती है। साथियों, मैंग्रोव संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का दायित्व है। तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण, प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक का सीमित उपयोग तथा जन जागरूकता को बढ़ाकर हम इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कर सकते हैं। साथियों, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंग्रोव केवल पेड़ नहीं, बल्कि जीवन, आजीविका, पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा का आधार है। यदि हम प्रकृति की इस अनमोल संपदा को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण प्रदान कर सकेंगे। साथियों, समय हो गया एक प्यारे से गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का ये गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है अरिजीत सिंह ने, बोल हैं राम संपत के और संगीत से सजाया है प्रशांत पांडे ने।

0: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: साथियों, समय हो गया है आज के क्रम मेरा शहर का, जिसका आप पूरे महीने बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसमें हम यह सुनेंगे साथियों आज के इस पूरे महीने जुलाई में बिलासपुर में क्या क्या खास रहा। आइए सुनते हैं। युवा साथियों नमस्कार। साथियों आज क्रम है मेरा शहर और इस क्रम में हम जानते हैं कि पूरे महीने बिलासपुर में क्या क्या खास रहा। साथियों इस क्रम मेरा शहर में हम दो जरूरी विषय की बात करेंगे, जिसमें इस माह पड़ने वाले रथ यात्रा की, और चूंकि यह युवाओं का कार्यक्रम है तो युवाओं से संबंधित एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो कि कोने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हुआ है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। तो साथियों आज रथ यात्रा के दिन हम पहुंच गए हैं रेलवे कॉलोनी जगन्नाथ मंदिर के पास, और रथ यात्रा की तैयारी यहाँ जोरों शोरों से चल रही है और कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अच्छी खासी भीड़ है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। बताइए आपका क्या नाम है?
2: पहले तो जय जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ।
2: मेरा नाम राशेश्वरी पुजारी है।
1: राशेश्वरी, और राशेश्वरी आप कहाँ से आई हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए?
2: मैं कोनी में रहती हूँ, पर हूँ उड़ीसा से। यहाँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मैं अपना पीएचडी कर रही हूँ।
1: वाह वाह वाह, और आप उड़ीसा से हैं?

0: हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ।
1: अच्छा, तो उड़ीसा में कहाँ से हैं आप?
0: मैं वेस्टर्न उड़ीसा से हूँ, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से।
1: अच्छा, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और
0: हाँ
1: आप कोनी में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं। और चूंकि
0: जी
1: रथ यात्रा तो पूरे देश के लोग इसमें जाते हैं और सब पूरी जाते हैं, आप यहाँ हैं बिलासपुर में, तो आप बिलासपुर की रथ यात्रा में शामिल होने आई हैं।
0: हाँ जी
1: तो आपको इस जगह के बारे में किससे पता चला, किनके साथ आई हैं आप?
0: मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ, अंजलि के साथ।
1: जी
0: और आप देखिए, आज तो रथ यात्रा है, हम ओडिया लोगों के लिए तो वो हमारे बंधु हैं। हम खोज निकाले कि यहाँ पे कहाँ पे रथ यात्रा होता है, तो हमें पता चला कि छोटे छोटे बहुत सारे काट यहाँ पे निकलते हैं। तो हमको पता चला रेलवे कॉलोनी में भी होता है बहुत बड़े पैमाने पे, तो हम खुद को तो रोक नहीं पाए, बींग एन ओडिया हमको आना ही पड़ा यहाँ पे।
1: अरे वाह,
0: जी
1: तो चलिए ये बताइए कि जो रथ यात्रा में आप आई हैं, तो इसके बारे में हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को आप बताइए कि रथ यात्रा का क्या महत्व है और इसके क्या पौराणिक कथाएं हैं।
0: पौराणिक कथा के बारे में अगर बताऊं तो इनके जितने भी किरदार हैं जगन्नाथ जी के साथ, सब अपने आप में एक एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन अगर मैं ये आपको बताऊं कि रथ यात्रा क्यों पालन किया जाता है, तो आपको महाभारत के युगों तक जाना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: जब हमारा महाभारत खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, तब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश का नाश हुआ तुम्हारे कारण, वैसे तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। तो जब वो ये बोले, उसके बाद क्या हुआ, 36 साल बाद यदुवंश नष्ट होने लगा। द्वारका छोड़ के फिर कृष्ण चले जाते हैं और एक जंगल में जाके अपना शयन करते रहते हैं। तब एक शिकारी आता है, उसका नाम है जरा।
1: अच्छा,
0: हाँ, वो क्या करता है, अपने धनुष, उनको लगता है जो पांव दिखता है भगवान का, उनको लगता है कि वो हिरण है।
1: अच्छा,
0: हाँ, बहुत घास फूस के जगह उनको पता नहीं चलता है, तो उनको लगता है वो हिरण है, तो तीर छोड़ देता है और भगवान के पांव में जाकर लगता है। वो भगवान के पास आके बोलता है कि हमें क्षमा कीजिए, हमको नहीं पता था ये हमारे मेरे से क्या हो गया, ऐसे बोलने लगे। तो फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं, मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखा था। तो उसके बाद भगवान की मृत्यु हो जाती है। भगवान की मृत्यु होने के बाद जितने भी रिचुअल्स होते हैं, उस सब से कर वो सब करके अर्जुन सब करते हैं। एक्चुअल में उनका शरीर, हाँ, अंतिम संस्कार जो होता है वो अर्जुन करते हैं। तो उनका तो सारा जल जाता है, लेकिन उनका जो हार्ट होता है, उनका हृदय, हाँ, उनका जो हृदय होता है वो रह जाता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो ब्रह्म का है। ठीक है, वो जो ब्रह्म शरीर है उसको फिर आकाशवाणी होती है, वो तो जलता नहीं है, फिर आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में ये बोला जाता है कि जो ब्रह्म शरीर है वो नहीं जलेगा। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, उसको एक कड़ी के अंदर रैप करके फिर समंदर में उसको बहा देते हैं।
1: अच्छा, ऐसी आकाशवाणी होती है कि भगवान
0: ऐसे, हाँ,
1: जो अंतिम संस्कार में नहीं जला है,
0: नहीं, हाँ,
1: तुम उसे सुरक्षित लकड़ी में करके कहीं प्रवाहित कर दो।
0: जी
1: जी,
0: ये होता है। राजा इंद्रद्युम्न रहते हैं
1: जी,
0: जिनके घर भगवान जाते हैं 9 दिन के लिए, उनकी बीवी होती है रानी गुंडीचा
1: जी।
0: तो फिर उनके सपने में आते हैं, वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। विष्णु जी फिर कहते हैं कि मैं तैर रहा हूँ, फ्लोट कर रहा हूँ, आप मुझे ले जाइए। वो सपने में सब दिख जाता है कि वो उनका जो हृदय है वो तैर रहा है समंदर में। तो फिर एक जो क्या होता है, सबर लोगों के राजा होते हैं, उनका नाम होता है विश्वबासु। कोई भी उस लकड़ी को उठा नहीं पा रहा था, सिर्फ भगवान उसी एक सबर राजा को अपना मतलब उठाने का उसको दिया था, आशीर्वाद दिया था कि सौभाग्य मिला था कि वही लकड़ी वही उठा पाया था। फिर क्या किए, विश्वकर्मा जी एक मूर्तिकार के रूप में आए, मूर्तिकार के रूप में आके राजा और रानी के सामने प्रकट हुए। जब राजा और रानी के सामने प्रकट हुए, उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा कि देखो भाई, हम तो भगवान को बनाएंगे, उनका सी बनाएंगे, उनका सब करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि 21 दिन तक कोई भी बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये गेट जो है ये बंद रहेगा। तो क्या होता है, उसके बाद ऐसे होते होते ना एक दिन क्या होता है, ठक ठक की आवाज आती है, क्योंकि वो मूर्तिकार है, वो गढ़ रहे हैं, तो आवाज तो सुनिश्चित आएगी ही। एक दिन बंद हो जाती है आवाज।
1: अच्छा,
0: आती ही नहीं है
1: उस कमरे से, तो आवाज आना बंद हो जाती है।
0: बंद हो जाती है।
1: हाँ।
0: तो गुंडीचा रानी को मन में होता है कि ये तो बूढ़े लोग हैं, ये मर तो नहीं गए, इनको तो खाना पीना इन्होंने किया ही नहीं है इतने दिन तक। तो वो राजा से विनती करते हैं कि राजा आप अभी खोल दो, आवाज ही नहीं आ रही है। तो राजा क्या करते हैं, खोल देते हैं दरवाजा। जैसे दरवाजा खोल देते हैं, वहां पे विश्वकर्मा जी नहीं

0: रहते हैं, वहां हो चुके होते हैं, और वो आधी गढ़ी हमारी प्यारी सी मूर्त सामने होती है, आधे हाथ आप देखेंगे जगन्नाथ जी का, पूरा हाथ नहीं होता है, पूरा शरीर नहीं होता है, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, फिर भी इतने प्यारे आधे गढ़े से होते हैं। तो फिर उनको बोला जाता है, वो जो राजा इंद्रदुम्न होते हैं वो बहुत शोक प्रकट करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपनी जान ले लूंगा, ये वो बहुत ये हो जाते हैं। फिर उनको सपने में भगवान आके बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी लीला है, ये आधा
1: लीला था।
0: हाँ, तुम मेरे भक्त हो इंद्रदुम्न, तुम अभी मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो अभी। तो फिर क्या करेंगे इंद्रदुम्न, वो जाते हैं गुंडीचा के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं ब्रह्मा से बुलाने के लिए ताकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। ठीक है, तो फिर ब्रह्मा आते हैं मर्त्य लोक को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और इसी दिन को हम कहते हैं स्नान यात्रा।
1: वाह वाह
0: जी। तो फिर उसके बाद भगवान से इंद्रदुम्न बोलते हैं, भगवान मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले जनरेशन, आने वाली मेरी पीढ़ी इस चीज से घमंड करे कि मेरे पूर्वज ने ये मंदिर बनाया, हाँ, ये स्थापन किया, हाँ, मैं नहीं चाहता ये चीज कि वो घमंड करे, वो गर्व करे इस चीज, मुझे आप निर्विकार कर दो, निर्विकार अर्थात निसंतान,
1: हाँ,
0: कि आने वाली पीढ़ी मेरी घमंड नहीं करे।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी, तो ये तो होता है निर्विकार, वो तो आशीर्वाद दे देते हैं निर्विकार रहने के लिए, लेकिन निसंतान का, लेकिन माँ तो माँ होती है, गुंडीचा जी को तो अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस होता है, अरे क्या बोल दिया, क्या मांग लिया, मैं कैसे निसंतान रहूंगी, ऐसे उनके मन में चल रहा था। भगवान जी जान गए, बोलते हैं आप मेरी माँ हो, आपके यहाँ मैं गढ़ा हूँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपसे मिलने के लिए 9 दिन जरूर आऊंगा।
1: अच्छा,
0: इसीलिए होता, हाँ इसीलिए होता है रथ यात्रा।
1: अरे वाह, तो राजेश्वरी आपने बहुत अच्छे से आकाशवाणी के श्रोताओं को और हमारी युवा साथियों को रथ यात्रा के पूरे महत्व को आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से बताया। तो आप रथ यात्रा में बिलासपुर में आई हैं जगन्नाथ मंदिर के पास, तो इस रथ यात्रा का सबसे शानदार आपको क्या लग रहा है?
0: जितने भी रिचुअल हुए हैं यहाँ पे, जैसे हमारे छेरा पोहंडा बोलते हैं, जैसे राजा वहाँ पे छेरा पोहरा मतलब झाड़ू पकड़ के उनका साफ सफाई करना, हाँ उनका साफ करना, उनको बिठाना रथ पे, नाचते नाचते डोलते डोलते वहाँ पे, यहाँ पे 56 भोग लगे, हम फिर आनंद बाजार जो होता है, हाँ, वही हाँ, भी था यहाँ पे, हम खाना खाए,
1: हाँ,
0: मन तृप्ति हो गई, बहुत अच्छा लगा।
1: तो आपने राजेश्वरी बहुत अच्छे से रथ यात्रा के महत्व को हमारे युवा साथियों को बताया, आकाशवाणी के श्रोताओं को। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप रथ यात्रा में आई हैं, आप अपनी सहेली के साथ रथ यात्रा को एंजॉय करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, रथ यात्रा की आपको शुभकामनाएं।
0: जय जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ। तो साथियों, चलते चलते हम आ गए हैं अपने बिलासपुर में कोने स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। साथियों, आज यहाँ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है उससे ये देखने में पता चल रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय है। तो मैं यहाँ किसी को देखता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। साथियों, हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट्स जो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं वो हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो बताइए आपका क्या नाम है?
2: जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से।
1: जी, तो चंद्रशेखर जी, मेरा नाम शुभम है और मैं आकाशवाणी से आया हूँ, और इस पूरे कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है इसको कवर करने के लिए आया हूँ। तो आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को बता सकते हैं कि क्या कॉन्फ्रेंस है और इसका उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं?
2: जी, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन रिसर्च साइंस एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से रिलेवेंट जितने भी रिसर्च हुए हैं उसके लिए है।
1: ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, आप इसमें आए हैं और आपने कहा कि आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो चंद्रशेखर जी ये बताइए कि आप वैसे मूलतः कहाँ के रहने वाले, बिलासपुर के हैं या कहीं और के हैं?
2: नहीं नहीं, मैं मूलतः राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डोंगर ब्लॉक से।
1: अच्छा, राजनांदगांव से है। तो चंद्रशेखर जी, हमारे युवा साथियों को आप ये बताइए कि किसी साधारण व्यक्ति को ये समझना रहे कि कॉन्फ्रेंस क्या है, तो किस प्रकार समझ सकता है?
2: मतलब जैसे मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो रिसर्च स्कॉलर का रहता है कि वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं अपने किसी टॉपिक, किसी डोमेन को लेके, तो अपने आइडियाज को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेजेंट करना, और कुछ अगर कोई कॉन्फ्रेंस वाले जैसे चाहते हैं कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो या फिर कुछ और आइडियाज एड करें, तो कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस किया जाता है।
1: ओके,
2: जैसे मेरा टॉपिक था क्वांटम मशीन लर्निंग,

0: जी
1: इन्वायरमेंटल हेल्थ असेसमेंट पे। तो
0: ओके
1: जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, तो यहाँ के जो सर थे उन्होंने डिस्कशन किया और बताया कि मेरा टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे हैं और इसमें और आगे क्या क्या किया जा सकता है करके।
0: जी, तो आपको उन्होंने मार्गदर्शित किया, आपको उन्होंने
1: जी
0: रास्ता दिखाया। तो सरल
1: जी
0: शब्दों में बात करें तो मैं आकाशवाणी के श्रोताओं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें कोई इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडी हमें प्लेटफॉर्म ऐसा देती है जिसमें जितने देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या लोकल लेवल पे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जो समाज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कुछ उनके अच्छे के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उन लोग अपना आइडिया एक दूसरे को शेयर कर सके। ऐसा ही कुछ
1: जी
0: यहाँ पर
1: हाँ
0: भी चंद्रशेखर जी हुआ है।
1: जी जी
0: तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं आप बता सकते हैं क्या?
1: एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हुए हैं। मैं इसमें अलग अलग सेशन बनाए जाते हैं, तो इसमें 5 सेशन बनाए। तो जैसे मेरे सेशन पे 16-17 लोग से ज्यादा लोग हैं, तो वैसे ही हर एक सेशन पे अलग अलग है। और ये 2nd दिन का है, पहले दिन और भी लोग रहे होंगे जो डायरेक्टली आके और प्रेजेंट किए हों। तो मे बी पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली भी लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें।
0: अच्छा, मतलब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, दूसरे
1: जी
0: दूसरे देश से भी लोग आए थे। तो
1: हाँ
0: सुना युवा साथियों, आप सभी ने चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छे से इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। अब चंद्रशेखर जी, आप हमारे युवा साथियों को इस कॉन्फ्रेंस में कौन सी ऐसी चीजें जो अच्छी लगी तो आप वो युवा साथियों को बताना चाहेंगे?
1: जी यहाँ का कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। वैसे ही जैसे मैं बाकी और भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो वहाँ पे मेरे को कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाई थी जो सुविधा मेरे को यहाँ पे मिला।
0: जी
1: और साथ में टाइमिंग वगैरह का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया कि हर एक
0: जी
1: सेशन, हर एक चेयर
0: समय से
1: पर्सन
0: हो।
1: अपना, हाँ अपना वक्तव्य तो सही
0: वाह
1: टाइम पे आए, सही टाइम पे दिए।
0: वाह
1: और
0: वाह,
1: बाकी जो, हाँ बाकी जो और खाने वाने का जो भी व्यवस्था होता है वो
0: वो
1: भी
0: सब
1: टाइम
0: अच्छा
1: टू
0: रहा।
1: टाइम, हाँ टाइम टू टाइम
0: और आपको
1: हुआ।
0: इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहां से पता चला?
1: मुझे मतलब यहाँ मैं पास वाले ही यूनिवर्सिटी से हूँ, तो कुछ प्रोफेसर वगैरह हैं जो,
0: कांटेक्ट में है तो
1: हाँ
0: पता चल
1: जो,
0: गया।
1: हाँ जिससे पता चला था।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपने अपना कीमती समय, आप कॉन्फ्रेंस में आए थे और आप किस
1: जी
0: तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
0: तो साथियों, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट्स अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। बताइए, आपका क्या नाम है?
2: आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम आराध्य तिवारी है।
0: जी आराध्य जी, आप कहाँ से हैं?
2: मैं मूलतः बिलासपुर के सकरी का निवासी हूँ।
0: जी सकरी से आप हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको कहाँ से पता चला और इसमें आप किस तरीके से पार्टिसिपेंट्स किए हैं?
2: क्योंकि मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस विभाग का शोधार्थी हूँ और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो उस विश्वविद्यालय से अपने विश्वविद्यालय में मास्टर्स करके पीएचडी करने आए हैं, तो
0: जी
2: इस वजह से संपर्क के माध्यम से उसके जो पोस्टर है वो मिला, तो उस हिसाब से मेरे को जानकारी हुई।
0: जी जी एक दूसरे के संपर्क के माध्यम से आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी हुई। और अभी थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर जी भी मिले थे, वो भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सीएसआईटी विभाग से हैं। तो ये एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए केवल है क्या?
2: नहीं, ये कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में मल्टी डायमेंशन था और उसमें क्या है कि कुछ एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग, इसके
0: जी
2: प्रयोग जो कोई भी व्यक्ति किया है अपने शोध के क्षेत्र में, अपने रिसर्च के काम में, तो उन वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ऐसा जरूरी नहीं
0: अच्छा
2: था कि कंप्यूटर साइंस के ही छात्र हो, कोई भी
0: जी
2: विषय का
0: जी
2: छात्र जो अपने विषय में मशीन लर्निंग का उपयोग किया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का किया हो, वो ज्वाइन कर सकता था।
0: तो आराध्य जी, आपने एक शब्द बोला भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक और बोला मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के समय में बहुत चर्चित शब्द है, और ये मशीन लर्निंग क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस प्रकार रिसर्च होता है, यदि आप सरल उदाहरण के माध्यम से बताएंगे तो हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को भी समझने में आसान होगा।
2: देखिए, जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है, मशीन लर्निंग यानी अपन मशीन को लर्न कराते हैं, किसी भी चीज के लिए ट्रेन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग एक पार्ट है ना। तो अपन जब मशीन को किसी भी चीज के लिए ट्रेन कराते हैं, तो मशीन के अंदर वो जानकारी स्टोर हो जाती है और अगले बार जब हमको जरूरत पड़ती है तो मशीन उस चीज के लिए ट्रेन होता है। जैसे कि मैं
0: जी
2: आपको अपने काम से रिलेट करके उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा काम इमेज प्रोसेसिंग में है, इमेज प्रोसेसिंग भी मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो जो
0: जी
2: अपने मशीन होते हैं उसको मैं इमेज

0: के माध्यम से ट्रेन करता हूँ, और ट्रेन करने के बाद जब एक बार आपको, आप मशीन को बहुत सारे इमेजेस दे चुके हैं और ट्रेन कर चुके हैं, जैसे अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं डॉग और कैट का, कुत्ते और बिल्ली का, तो अपन बहुत सारे इमेजेस जब मशीन को 100 इमेज डॉग के और 100 इमेजेस कैट के दे चुके हैं, उसके बाद जब 101वां इमेज देंगे, यानी अपन नया दूसरा कुछ इमेज देंगे जो अपन उसको बताएंगे नहीं कि ये डॉग का है या फिर कैट का है, तो मशीन उसको अपने प्रीट्रेंड डेटा से जो उसके पास नॉलेज स्टोर हो चुका है उसके माध्यम से उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ये एक प्रकार का मशीन लर्निंग है।
1: वाह वाह, तो आपने बहुत अच्छे से मशीन लर्निंग के बारे में बताया। और एआई तो हम सभी जान ही रहे हैं, आज के समय में बहुत चर्चित चीज है, और इसका हम युवा जगत के लोग हों या और भी लोग हों, सब इसको यूज करते हैं। तो आपने अपना समय दिया इस कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आराध्य जी।
0: धन्यवाद।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरा शहर, जिसका आप सभी पूरे महीने इंतजार करते हैं, और इस बार बिलासपुर में क्या क्या खास रहा वो आपने सुना। साथियों, हम बात कर रहे थे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है, तब मैंग्रोव का महत्व और बढ़ जाता है। ये वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर अपने भीतर और मिट्टी में लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इस क्षमता को ब्लू कार्बन कहा जाता है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने में सहायक है। साथियों, बातें बातचीत और होते रहेंगी, समय हो गया एक प्यारे से गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म सत्यमेव जयते का ये गाना, जिसे अपने सुरों से सजाया है आतिफ असलम और तुलसी कुमार ने, बोल है कुमार के, और संगीत से सजाया है रोचक कोहली ने।

तो साथियों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको आज का यह कार्यक्रम युवा जगत कैसा लगा, आकाशवाणी बिलासपुर को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

कार्यक्रम युवा जगत का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, शाम के 6:05 में है। लीजिए अब प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी दिल्ली से आज रात 8 बजे हम रिले करेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने शाम 6:20 और शाम 7 बजे श्रोता सुनेंगे। शाम 7:20 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आज चर्चा करेंगे श्रोताओं पशुधन के समुचित देखभाल और इस विषय पर, और भेंटवार्ता में सुनेंगे औषधि मशरूम की खेती एवं उपयोगिता। डॉक्टर चेतना जांगड़े अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय कटघोरा कोरबा की इस विषय पर हमें जानकारी देंगी। भेंट करता होंगे बैसाखू भैया। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे रात 9:15 से रात 11 बजे तक। और अब आपको जानकारी दे दे कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल रात 8 बजे कार्यक्रम संसद समीक्षा और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 8:30 पर छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया और 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। कल शाम 5:05 पर कार्यक्रम साहित्यिकी में सुनिएगा काव्य पाठ डॉक्टर मकर ध्वज श्रीवास्तव से और हास्य वार्ता करेंगे विनोद कुमार गुप्ता। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। मिर्ची मां रोग नियंत्रण इस विषय पर जानकारी लेकर आएंगे 6:30 पर कार्यक्रम खेती की बात में। दिन के 11 बजे प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे 9 बजे दिन के 11:30 पर, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9:15 से रात 10 बजे तक। शाम 5:35 पर कार्यक्रम महिला सभा लेकर आएंगे। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे श्रोताओं सतर्क रहें हेपेटाइटिस को हराएं इस विषय पर, और साथ ही आप सुनेंगे क्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। कल शाम 7:20 का समय होगा कार्यक्रम ग्राम सभा का। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे प्रथम सुख निरोगी काया इस विषय पर।

और कार्यक्रम किसानवाड़ी का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। कार्यक्रम में आज के बाद में चर्चा होगी श्री अन्न की खेती से खेत लाभ, और इसके अलावा लेकर आएंगे भेंट वार्ता में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में। इसमें सुनिएगा ग्राम कछार विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, संपादन और रिकॉर्डिंग राजू भैया का। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारक संशोधन विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री है आज निमोरा में आयोजित प्रदेश के सबो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन के उच्च स्तरीय बैठक लीन। और मौसम विभाग है अवैया दो दिन में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ एक जिला में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश करेगी। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होए में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हा ये विधेयक ला सदन में प्रस्तुत करें। विधेयक पेश करे के दौरान विपक्षी सदस्य मन हा नीट मुद्दा में विद्यार्थी मन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई ऊपर चर्चा के मांग करत हंगामा करें। इमा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हा कहिन की परीक्षा में सुधार के दिशा में ये विधेयक हा पहली बड़े कदम है और एकर ऊपर चर्चा होना चाहिए। फिर हंगामा जारी रहे मा सदन के कार्यवाही ला स्थगित कर देगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा काली परीक्षा सुधार बर उच्च स्तर के कार्यबल के गठन के घोषणा करें। एकर अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकनी हा करहीं। ए कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा घलो शामिल हैं। प्रधानमंत्री हा अपन वीडियो संदेश में कहिन कि ये कार्यबल परीक्षा प्रणाली ला औ मजबूत बनाए ऊपर काम करही। ओमन कहिन कि सरकार हा प्रतियोगी परीक्षा मन में निष्पक्षता बनाए राखे बर औ करोड़ों विद्यार्थी मन के भविष्य के रक्षा बर पूरा तरीका ले प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नवा रायपुर के एसआईआरडी परिसर निमोरा में आयोजित प्रदेश के सबो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन के उच्च स्तरीय बैठक लीन। बैठक में मुख्यमंत्री हा कहिन कि ग्राम पंचायत मन के सिर्फ योजना मन के क्रियान्वयन के इकाई नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना होही। बस्तर पंडुम 2026 के विजेता प्रतिभागी और जनजातीय प्रतिनिधि मनला सम्मान 30 जुलाई के राष्ट्रपति भवन में करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 209 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले शिष्टाचार भेंट करही। प्रतिनिधि मंडल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, बस्तर पंडुम के विजेता परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधि और पद्मश्री सम्मानित विभूति मंडला सम्मानित किए जाही। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आज स्थापना दिवस है। मौका में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबो जवान मनला शुभकामना दीन। उमन कहिन कि राष्ट्र सीआरपीएफ के वीर जवान मन के बहादुरी बलिदान और कर्तव्य निष्ठा ला नमन करते। राज्य सरकार हा भारतीय वन सेवा के 7 जन अधिकारी मन के तबादला करे है। जारी आदेश में संजीता गुप्ता ला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ के प्रभारी प्रबंध संचालक बनाए गए हवै। अमरनाथ प्रसाद ला वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव के संगे संग छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के उपराहा प्रभार

0: पुरस्कार देगी हवै। एकर अलावा एस वेंकटाचलम, अभिषेक कुमार सिंह, गुरुनाथ एन, प्रणय मिश्रा और रमेश कुमार जांगड़े के घलो तबादला करेगी हवै। रक्षाबंधन के मौका में प्रदेश में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान शुरू करेगी है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ेहा प्रदेश के माता बहनी और लयिका मन ले ये अभियान में भाग लेके अपील करीन है। ओ मन की हिन की लोगन अपन हाथ ले बने राखी सैनिक मन बर शुभकामना संदेश और अपन आंगन के एक चुटकी मिट्टी 30 जुलाई तक नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में जमा करा सकत है। ओमन बताए की एकत्रित रक्षा सूत्र और संदेश पूर्व सैनिक महासभा के माध्यम ले सेना मुख्यालय भेजे जाहे जिहां ले ला देश भर में तैनात सैनिक मन तक पहुंचाए जाहे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आऊ अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। राज्यपाल रमेंडे कहा कि इन्हें कि सिंधी समाज है स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता के मिसाल है। उमन की हिन की विभाजन के कठिन परिस्थिति के बावजूद सिंधी समाज है अपन परिश्रम और दृढ़ संकल्प ले देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे हवै। राज्यपाल काली रायपुर में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत डहार ले आयोजित मुखी संवाद कार्यक्रम में बोलत रहिन। ये कार्यक्रम में प्रदेश के 128 सिंधी पंचायत के प्रतिनिधि मन शामिल हुई। बस्तर जिला में 5वीं और 8वीं कक्षा के 485 विद्यार्थी मन ला गलत अंक सूची जारी करे के मामला आगू आए है। कलेक्टर है ये मामला में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ला कारण बताओ नोटिस जारी करीन है। कलेक्टर आकाश शिकार बतन की जौन क्षेत्र में गलत अंक सूची बांटे गए है वहां जल्दी सही अंक सूची देवाया जाए। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के अग्निवीर भर्ती के लिखित परीक्षा में सफल हुए 42 जन अभ्यर्थी मनला अब निःशुल्क शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण दे जाही। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र है 22 की प्रशिक्षण ला पूर्व सैनिक मन के मार्गदर्शन में आयोजित करे जाही जेखर ले अभ्यर्थी मन हा अवैया शारीरिक परीक्षा के बने तैयारी कर सके। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया दो दिन में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ एक जिला में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भारी वर्षा बर ऑरेंज अलर्ट जारी करेगे है। यही बीच आज राजधानी रायपुर में मंझनिया बाद तेज वर्षा होइस। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग दहाले 27 जुलाई की स्थिति में प्रदेश में 1 जून ले अभी तक औसतन 421 मिलीमीटर वर्षा दर्ज करेगे है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के माधोपल्ली क्षेत्र में काली नाला पार करे के दौरान एक ठन कार हा तेज बहाव में बह गए है। हादसा में एक झन मनखे के बहे के शंका जताए जावत है। पुलिस और ग्रामीण मन के मदद ले सर्च ऑपरेशन शुरू करेगी है। वही बिलासपुर जिला के अरपा नदी में एक झन अज्ञात युवक के शव मिले है। जिला पोस्टमार्टम पर सिम्स भेज दे गए है। कोनी पुलिस हा ये मामला के जांच करत है। एटी दुर्ग जिला के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में खारून नदी में डूबे एक झन युवक के शव बरामद करे गए है। युवक अपन संगवारी मन संग काली ग्राम जमराव में पिकनिक मनाए बर गए रहिस। कांकेर जिला में पाछो दो दिन में मलेरिया ले दो झन लयिका मन के मौत हो गए है। मामला इरादाह और मर्दापोटी छात्रावास के बताए जावत है। यही जिला के 11 जन छात्र मन हा मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हवे। यही बीच स्वास्थ्य विभाग हा कहे है कि प्रभावित क्षेत्र में जांच उपचार और सरलग निगरानी करे जावत है। विभाग के अनुसार दोनों मामला में लयिका मन के समय में जांच दवा और जरूरत पड़े में रेफरल के व्यवस्था करे गे रहिस। जांजगीर चांपा जिला में शेयर ट्रेडिंग के नाम में करोड़ों रुपया के ठगी के मामला में फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय हा लुकआउट सर्कुलर जारी करेगे। पुलिस हा आरोपी के तलाश कराते और लोगन ले उखर जानकारी मिले मा तुरते पुलिस ला सूचना देके अपील करे है। लाइन दोहरीकरण काम के स्थिति बिलासपुर ओखा एक्सप्रेस के परिचालन आंशिक रूप ले प्रभावित रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ले चलैया बिलासपुर ओखा एक्सप्रेस ला

0: और 3 अगस्त के परिवर्तित मार्ग ले चलाए जाही। दुर्ग जिला के कुम्हारी पुलिस नशीला पदार्थ के तस्करी के आरोप में एक जन मनखेला गिरफ्तार कर रहे। आरोपी तिरले 1,000 अल्प्राजोलम टैबलेट, 1 लाख रुपया नगद, 1 ठन कार और मोबाइल फोन संग्रह, 8 लाख रुपया ले ज्यादा के सामान जब्त कर गए है। अब थोड़कुन समाचार सार मा पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि मा आज कृतज्ञ राष्ट्र उमनला श्रद्धांजलि देवत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत प्रदेश के प्रतिभाशाली नवाचारी और प्रेरणादायी लयिका मन ले 31 जुलाई तक आवेदन मंगाए गए हवय। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री आज निमोरा में आयोजित प्रदेश के सबो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मन के उच्च स्तरीय बैठक ली। नौ मौसम विभाग वैया 2 दिन में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ एक जिला में भारी ले अति भारी वर्षा हो के चेतावनी दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वा
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनने वाले सभी श्रोता साथी। स्वीकार कीजिए आपके अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म काली घटा से। लता मंगेशकर की आवाज़ है इस गीत में, आनंद बख्शी के बोल। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ईमेल के जरिए पसंद आई है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप का मेल आया है। वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से पसंद आई है खीकराम देवांगन, रेणु रजनी और प्रियंका देवांगन की। और आप हैं डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू कटिल्ला से पसंद भेजी है कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा ने। सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन ने भी इस गीत को पसंद किया है। पौड़ी भाटा कलतरा से पसंद आई है दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन की। मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू और यशोता। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी कल्पित, गर्व और हिमाक्ष। और आप हैं पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। बटिंडा पंजाब से पसंद भेजी है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत ने। तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी और साथ में हैं सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोद्री बाई, मनमोहन सिंह, गिरजा बाई चंद्रपाल और लक्ष्मी थदवानी। इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, मीना चैतन्य, मेघा मस्कीन का मेल। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। और महसूल सीतामढ़ी बिहार से पसंद मुसर्रत जहनाज, तलहत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज की पसंद। चिरमिरी कुरासिया कालेरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालंद्री लहरे का ये मेल। तेलंगाना भुवनगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद युसुफुद्दीन की पसंद। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी।

स्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी पटियाला से है मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता और जगराव से पसंद आई है सुनील पाठक कमल दीपिका मल्होत्रा गाव्या सुच्चा सिंह पाठक की। तो लीजिए सुनिए काली घटा फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म काली घटा का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, और अब आपको सुनाते हैं अगला फरमाइशी गीत इस फिल्म से। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस 55। गीता दत्त की आवाज़ है इस गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, संगीत ओपी नैयर का। पसंद मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार और रोहित राज की आई है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीत और गीता। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। और इस गीत को हमारे और भी श्रोताओं ने पसंद किया है। ये श्रोता गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह हैं। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोयामनी, उमा तिवारी। हांसी से पसंद आई है राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी की। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग। धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद

साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, साथ में हैं निगहत परवीन, शाहना नवाज, सरफराज, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार कमेल। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी और मालती चौधरी का मेल। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चौरम वर्मा, सूरज पारिकर, नारायण यदु और भुवन कामरी की पसंद। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना। और ये श्रोता जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया। बुलढाणा वर्ड सिंगी, महाराष्ट्र से पसंद अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार की। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी, साहिल और भारती बघेल ने भी इस गीत को पसंद किया है। आप है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, पूजा परिहार। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से पसंद आई है जयराम सिंगड़कर, दिशांत और अर्पिता की। रायपुर से पसंद नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की। गांव हीरावली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, बिमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नहवाकर, निर्मला, विशाल नहवाकर। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश, वाशु, डॉली और पूर्वेश साहू, इन्होंने भी इस गीत को सुनना चाहा है। तो अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली,

0: नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं मेरा साया। इस फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, ये गीत है राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत। और पसंद आई है राजकोट से जोली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी की। जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम का मेल। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर। रुद्रा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ ठाकुरावाला से पसंद स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह की पसंद आई है। और लोहारीडीह जिला कवर्धा से हैं श्रोता अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, लालिमा, खुशांत और निशांत साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज अहद और साथ में निफ्रा नवाज चाहत। पलारी से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन का मेल। लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श आतिका। डोंडी लोहरा बालोद से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अलकबीर। सरगांव बाजार से पसंद आई है नसीब मोहम्मद, हबीब इरफान मोहम्मद की। बाग बहारा भदरसी से पन्ना लाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन। दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन, माही सेन। बरकाकाना से अफजल ताज शाहिन, सुल्ताना सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से पसंद भेजी है शाहजी भोटके, नंदा और हनुमान बोडके ने। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज, तिरुपति साहू का मेल। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। और टोरोवाल नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी का मेल हमें मिला है। फिल्म सिटी मुंबई से पसंद अदीबनाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सब अंसारी की आई। पूर्णा जक्सन मस्तानपुरा से हैं आप, अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। पलारी से प्रकाश शर्मा, निखिल यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा। और पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर पांडे का मेल। तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर मेरा साया फिल्म का ये गीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म पद्मावत का ये गीत, नीति मोहन की आवाज़, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा गीत, संजय लीला भंसाली के बोल। पसंद आई है महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई की, यवतमाल से राहुल मनोवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र और साथ में दुष्यंत राघवेंद्र साहू का मेल, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आड़ोकार, नेपनगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि अश्विन और साथ में मंगलाबेन और राजेंद्र शाह का मेल। और ये श्रोता है धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत और कृष्टि पटवा, वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।

पद्मावत फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, नीति मोहन की आवाज़ थी। और अब इसी गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम एंड 103.2 MHz पर शाम के 6:45 हुए हैं। समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कांकेर जिले में बीते 2 दिनों में मलेरिया से 2 छात्रों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में जांच, उपचार और निगरानी की बात कही। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पेश किया गया, पहले स्थगन

0: के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर कड़ा कानून बनाने का निर्णय लिया है। श्री साय ने कहा कि इससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
2: का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने युवाओं की चिंता की है। वैसे तो चिंता करते ही रहे हैं, लेकिन जो पेपर लीक का मामला है इसके लिए कठोर कानून वो बना रहे हैं। पहले कैबिनेट में निर्णय लिए, अब वो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है, तो इस तरह की पुनरावृत्ति आगे चल के नहीं होगी।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी परिसर निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत, जी राम जी योजना, लखपति दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कांकेर जिले में बीते दो दिनों में मलेरिया से दो छात्रों की मौत हो गई है। मामला ईरादाह और मर्दापोटी छात्रावास का बताया जा रहा है, जबकि इसी जिले के 11 छात्र मलेरिया से पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जांच, उपचार और निगरानी लगातार की जा रही है। विभाग के अनुसार दोनों मामलों में बच्चों की समय पर जांच, दवा और जरूरत पड़ने पर रेफरल की व्यवस्था की गई थी। मलेरिया मुक्त अभियान के तहत संबंधित क्षेत्रों में जांच भी कराई गई, जिसमें अन्य लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुखार के मरीजों की पहचान, जांच, समय पर इलाज और गंभीर मरीजों को उच्च स्वास्थ्य केंद्र भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। साथ ही लोगों से बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने और पूरी दवा लेने की अपील की गई है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कथित आर्थिक अनियमितता के 18 वर्ष पुराने मामले में तत्कालीन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित 8 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में 6000 पृष्ठों का चालान पेश किया है। वर्ष 2006 से 2008 के दौरान जिला पंचायत कांकेर और 7 जनपद पंचायतों में सामग्री खरीदी में निर्धारित नियमों और निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जांच में करीब 1,69,00,000 रुपए की कथित वित्तीय अनियमितता के साक्ष्य मिलने की बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में खेल विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों और प्रशिक्षकों को छत्तीसगढ़ में नई खेल संस्कृति विकसित करने तथा खेल हब बनाने, नई सोच और विजन के साथ काम करने के निर्देश। बैठक में विभाग ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण, व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही ज्यादा से प्रादेशिक समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, शाम 6:55 से शाम 7:03 तक आप हमारा प्रसारण नहीं सुन सके, इसका हमें खेद है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM एंड 103.2 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। आज है आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम का पहला

फरमाइशी लिया है फिल्म अनुपमा से आशा भोसले की आवाज़ कैफी आजमी के बोल हेमंत कुमार का संगीत पसंद है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा की महरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर सरिता प्रिंस एकांश गवाड़कर पैठड़ से पसंद आई है सुरेश जाधव अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल सिया जाधव की कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित कुमार और हैप्पी राय और ये श्रोता दतरेंगी भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल वर्मा सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश रमेश गौड़ शदाब खत्री पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चांसोलिया जसुडिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्य सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्राव्य रामटेके बठैना पाटन से परमेश्वर साहू राजपत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश और रेशमा साहू लछनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निमी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू का मेल नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या साहू और ये श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा कपिल पूजा परिहार रिंगनी से पसंद दिनेश वर्मा करुणा वर्मा की श्रीरामपुर से अशोक दले सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले का ये मेल हम तक पहुँचा है तो लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर अनुपमा फिल्म का ये गीत।

अनुपमा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना। कैफी आजमी के बोल थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं इन सभी श्रोता

साथियों की पसंद का गीत कतियापारा जूना बिलासपुर से ईमेल भेजा है सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन ने मुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का मेल, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से पसंद आई है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल की, जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, भरत और साथ में कमल शाहानी, गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशीष, सोनाली नारंग, बरेली कैंट चनहट उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान, सरगांव से पसंद भेजी है राजेश शर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा ने, खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा का मेल, भिलाई तीन चरदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून शाहन नवाज अहमद सिद्दीकी का मेल आया है और आप हैं बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से ईमेल फरमाइश भरा हम तक पहुंचा है छनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी का, भाटापारा से हैं श्रोता दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, नीरज, शुभम, सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव और एस के पप्पी का ये मेल, मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान, आमना, आसमा और आशु अहमद फूलवाले, दिल्ली से ही ये श्रोता हैं प्रमिला, हेमा और अंतरा सिंह, और डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली का मेल हम तक पहुंचा है और ये फरमाइश भरा मेल तखतपुर से आया है मिश्र लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा का, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं श्रोता नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, साथ में शाइना मेंडी शर्मा, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून का मेल, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, सम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, माधुरी और किरण का मेल आया है और झज्जर हरियाणा से हैं मिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू और मयंक भाटिया, ये मेल हमें भेजा है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभांसी अनुभव, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालंद्री लहरे, निमानाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर का मेल, बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गहवाड़कर, टुकटुक प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गहवाड़कर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत कौर, मनु का मेल, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस टेक्रेस्ट्रो, तलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौदी, जयंती हेमंत, उमंग मोक्ष पटौदी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और ईशप्रीत शर्मा का मेल और हमारे ये श्रोता हैं कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राज जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली देशमुख, सर्वत सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिर अजीम, नगमा अजीम, गंडे टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन का मेल हम तक पहुंचा है और कैदीमुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, गांधी बागाकुला से रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर और ये श्रोता हैं दिल्ली से सोनम, सना और आदिबा, मलोट से फरमाइश आई है रमेश कुमार जाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और साथ में आरजू और गुड्डू जाझोरिया की और आप हैं दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत इशरत और मक्कार जहां और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, दतरंगी से फरमाइश हमें भेजी है विश्राम यदु, पार्वती प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु ने और रोहांसी से पसंद आई है डगेसर राम साहू, अलका जानवी साहू की और उनके साथियों की, तो लीजिए सुनिए
बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल।

बेताब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आप तक पहुंचा रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, आरडी बर्मन का संगीत। और अब इसी गीत के साथ ही फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने यहीं समाप्त करने की दीजिए अनुमति। श्रोताओं कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को स्टूडियो में शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा बरसात में

में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा। शरीर में होने वाले तिल व मशों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय और इन विषयों पर आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2665923100026, हमारा स्टडी कोड 077752। सूचना समाप्त हुई। शाम के 7:30 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनैया जम्मू संगी संगवारी दाई दीदी भाई बहनी मल्ला चैतु भाई के राम राम जय जोहार। संगी हो देखो गदगदा के बढ़िया पानी गिरे लगी, सब खेती बाड़ी के काम जोर शोर से चलत है ना भाई। औ हम खेती बाड़ी करथन संगी हो, खेती बाड़ी में हमार सबले ज्यादा जो संग देने वाले हैवे वो हवे हमार पशुधन है ना भाई। खेती में सहयोग और कहूँ हम परंपरागत खेती के बात करथन, जैविक खेती के बात करथन, तो ये पशुधन मन के महत्व और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। ये बात ला आप सब झन जाना था, कतको झन संगवारी मन तो पशुधन मन के सेवा करके धन धन कमावत थे है ना भाई। फिर देखो संगवारी हो, ये बेरा में जोन बरसात के बेरा होते ना, हमार जोन पशुपालन करिया संगवारी है उखर बर ये जोन पशुधन है बड़ा जतन करे बर पड़ते, चेत करे बर पड़ते। खास करके जौन ये हमन के मौसम है अभी चलत है जौन बरसात के, काबर यही मौसम में संगवारी हो आनी बानी के बीमारी है रोग है हमार पशुधन में होए के संभावना बढ़े थे। कारण ये है कि अभी देखो हरियर हरियर लीपी चारा हवा है ना भाई चारों मुड़ा में, अभी एक मन के अक्तह खावत हैं आ कोई रोकैया टोकैया घला नहीं है है ना भाई। अब ये बेरा में हम देखा थन तहु घर पेट गड़बड़ा जावत है, पतला गोबर होए लगत है, पेट में कृमि के शिकार हो जावत है। काबर के ये जौन हरियर हरियर छोटे छोटे जौन कांदी है चारा है लिपी ओमा इल्ली है छोटे छोटे अंडा है छोटे छोटे कीड़ा है ये मन सबो चल देते। अब मन छाटत नहीं मेरा धुआ थोड़े रही है ना भाई, तो कहे मतलब हम अल्लाह विशेष चेत करना है। खास करके ये बेरा महमन देखथन संगवारी हो हमार पशुधन में खुरहा है चपका लंगड़ा बुखार भौरी रोग ये जो आनी बानी की बीमारी है ये सब यही बेरा में होते। फिर पशु मन के पाचू पाचू हम दिन भर घूमे तो सकन नहीं, केवल हम बताई देह खाए के देह नोह खाए के, ये बेरा में विशेष चेत करे के हम अल्लाह जरूरत पड़ते संगी हो। तो सबले पहली आप मन ला हम ये कहबो कि जो टीकाकरण हुआ ये ला सबले पहली अपन बूता मान के सबले बढ़िया चेत करके ये ला बेरा रहते लगवा लो। और ये है सरकार डहर ले एकदम मुफ्त निशुल्क लगते है ना भाई। अपन असगई पसगई के जौन पशु चिकित्सा केंद्र हवे वहाँ जाके वहाँ के डॉक्टर साहब मन लंग पूछ लेवा कि मन आपके गांव में आपके मोहल्ला में आपके घर में कौन देना है। काबर के पूछना जरूरी है खरबर है, कहो डॉक्टर साहब मन टीका लेके आ गए और कहो गरुआ गए चरे पर तब भाई अगोरा थोड़े रहेगा है ना भाई। वहू मल्ला चार घर जाना है और सरकार डहर ले वहू मल्ला ये मिले रही थे कि भाई अतका कन गरुआ के कम से कम टीकाकरण करना है। तो हम चेत करी मन जिन दिन आवा उस दिन हम गरुआ मल्ला ना ढीली चरे पर बांध के रखी और डॉक्टर मन जब इंजेक्शन लगावा तब मल्ला बढ़िया जानकारी दे कोनो गरुआ है कहूँ गाभिन है गाय तो कतेक दिन के है काय कैसे मन ला पता चले ताकि टीका लगाए में कोनो प्रकार के दिक्कत झन हुए। और डॉक्टर साहब मन कहूँ कहे कि गरुआ ला दो दिन नहीं चरल ढीलना है कि चार दिन नहीं चरल ढीलना है, ठंडा पानी नहीं पिए देना है, पानी में नहीं भींगन देना है, तो वेला बढ़िया विशेष उखर जो सीखोना बात है ओला चेत करके गठिया के रखना है या ओला अमल में लाना है। संगे संगे मन देखते संगवारी हो पानी जब ज़्यादा गिरे लगते हैं ना तो सब जगह पिचपिचाए लगते कतको झन।

0: के जोन गौशाला है कोठा गरुआ बांधे के, वो तो बड़ा बढ़िया फरस बिछे रही थे, फ्लोरिंग हो रही थे, तो बढ़िया सूखा पाखर रही थे। फिर कतको झन मन के माँ बड़ा चिखला हो जाते, आओ माँ मंगसा मन सनसनाए लगते। तो कोशिश ये करना चाहिए कि फरस नहीं बिछे है, फ्लोरिंग नहीं हुए हैं, तो कम से कम बढ़िया मुरुम बिछा दी, ताकि पानी है, गरुआ मन के गोबर है, गौमूत्र है, वह बढ़िया उमेल साफ हो जाए, है ना भाई। पक्का है, फरस है, तो देखी बरसात लगी जौन भी ओमा गड्ढा बीच में हो जा रही थे, दो फरस के बीच में कहूँ गड्ढा है, ओला सीमेंट में बढ़िया भर दे, और दो दिन में चार दिन में कम से कम एक पेट बढ़िया फिनाइल डाल के बढ़िया पानी मार के ओला धो दे, तो ओमा माछी है, मंगसा है, एमन हम नहीं बैठी, छोटे छोटे जन कीड़ा पनप थे वो नहीं हो। संगी हो गोड़ बात तो अभी करबो, फिर संदेश मल्ला सुन लेथन।
1: भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, महासमुंद, कोंडागांव, रायगढ़, राजनांदगांव, नारायणपुर एवं सूरजपुर जिलों में फसल बीमा योजना खरीफ 2026 मौसम हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना में धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी, मड़वा अधिसूचित फसल का बीमा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की फसल बीमा से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन, सहायता या शिकायत के लिए तुरंत कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें। प्रशिक्षित प्रतिनिधि आपकी सहायता के लिए सदैव उपलब्ध है। 7065514447 पर हमारे फसल बीमा चैटबॉट को केवल नमस्ते या हाय लिखकर संदेश भेजें। चैटबॉट आपको योजना की जानकारी, बीमित फसलों क्लेम की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। फसल सुरक्षा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगी हो, जिसे कि हमन बताएं कि फरस मल्ला साफ रखना है, गरुआ कोठा मल्ला गौशाला मल्ला धो मांज के रखना है। एकर फायदा का हो ही कि जो कीड़ा होते छोटे छोटे वो नहीं हो है, मंगसा कम हो जाही, किन्नी पेशवा मन झन हुआ एकर चेत करना है। गरुआ मन छोटे छोटे खास करके बछरू मन है, पठरू मन है, वो मन हाँ फील के आते ना, तो कम से कम सूखा पाखर मावे हैं तो मल्ला कपड़ा माँ चेंद्रा माँ पहुँच देना है, ताकि उमन ज्यादा कुटकुट ले जड़ाए झन। कतको आप मन देखे हो जोन पशु है, कतको कन पशु हर घर में ये देखे वो मिल जाते, कि उमन दू ठो गोड़ ला वो पानी पिए वाले जोन कोटना है तेमा बोर के खड़ा हो जाते, अब उमन ला पता नहीं है। अब देखा हूँ खर गोबर जोन लगे है गोड़ में, चिखला माटी लगे है, वह वही कोटने में धोआ जाते, वही पानी लेता उमन पीते, अब ओखर बात तो फिर उमन बीमार पड़ जाते, काबर के पानी में मिझर जाते गोबर माटी मन हो। तो ऐसा पशु है तो आप मन विशेष ध्यान करना है कि जब भी ऐसा हो तो उमा के पानी ला आप निकाल दो, और बढ़िया उमा ताजा और साफ सुथरा पानी उमा भरना है संगवारी हो। संझा बेरा जिसे हम देखा थन मंगसा ज्यादा है, तो गोरसी में छेना ला थोड़कन सुलगा के उमा सूखा कच्चा लीम के डारा पाना के धुआं कर दे, मंगसा मन भाग जाते। संगे संग ये बरसात में जो हरिया चारा के संग सूखा चारा पशु मल्ला जरूर खवाना है, जो भी आप मन में उपलब्ध है पैरा कटिया वगैरह रखे हैं, काबर के ज्यादा हरियर चारा खाते हैं तो समस्या होते, तो समस्या ले बांट सका था। और कहूँ समस्या होते ये सब बचत करे के बाद, ये सब चेत रखे के बाद भी अगर कोनो समस्या होते पशुधन में, तो निश्चित तौर ले हमला चेत करना चाहिए पशु के व्यवहार में, कहूँ पशु जो है सिन्न है, सुस्त है, और जानकार मन बताते जो उन पशु धन है हमर जिसे गरुआ बछरू है ना, उनका नाक के फुलगी मन में छोटे छोटे

पानी के दाना कसरी थे संगवारी हो ये मोती पानी कथे ओमन ये होना चाहिए जरूरी है कथे ये सुखा होते तब हो मन बीमार बुखार रही थे कतको जन संगवारी मनन तो कान लछू के घला जान रहते कि बुखार हवन ये प्रकार के कहो उन खाना नहीं खाते सुस्त है दूध देह पर कमी होने लगी तो निश्चित तौर ले आपला जो आपके पस गई माँ पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर हैं उनखर ले संपर्क करना है संपर्क करके पशु के स्वास्थ्य की जांच करवा लेना है। ये प्रकार ले पशुधन के समुचित देखभाल अगर हमारे पशुपालक भाई मनो किसान भाई मन कर ही तो निश्चित तौर ले पशुधन में जो होइया रोग बीमारी है ओखर ले जो होइया नुकसान है ओखर ले बांट सके और संगवारी हो पशुधन बहुत बड़े धन होते जेखर घर में है वो मन अनजान थे कि पशुधन सही मायने में कतका महत्वपूर्ण होते। एक सूचना है जैसन कि आप मन जाना था हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन संध्या बेरा 7:30 ले फोन इन में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते जिमा किसान भाई मन कृषि उत्पाद पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और अपन स्वास्थ्य ले संबंधित समस्या के समाधान पाए खातिर व विशेषज्ञ मन ले फोन करते हैं सवाल पूछते हैं और ओकर समाधान पाते हैं। यही घड़ी में ये बृहस्पतिवार यानी कि दिनांक 30 जुलाई 2026 के हमन के स्टूडियो में रही ही हमर पहुना शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे जी उमन उपस्थित रही हैं। इधर मेर बिहनिया बेरा 10:30 ले 11 बजे तक सवाल पूछे के विषय रही बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान और 11 बजे ले 11:30 तक के सवाल के विषय रही संगवारी हो शरीर में होने वाले तिल व मसों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय ये विषय में संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर पर हमार फोन नंबर आप मन जानत हो तब एक पिट मिला लो हमार फोन नंबर है 2-6-6-5-9-2 एक ठो नंबर है 3-1-0-0-2-6 फोन लगाए के पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड तको लगाए बर पर ही जौन हवे 0-7-7-5-2 तो फोन जरूर लगा सुनवारी हो और ये कार्यक्रम मन के रिकॉर्डिंग के प्रसारण आप मन ला सुने बर मिल ही 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 संझा बेरा 7:30 ले 8 बजे तक तो फोन जरूर लगाओ। अब सुनथन एक सुघर गीत जिला गावत है लक्ष्मण मस्तूरिया में।

0: ये सुघर गीत लगावत रही से संगवारी हो लक्ष्मण मस्तुरी हम। देखो संगवारी हो, खान पान बढ़िया रही थे तो शरीर गला बढ़िया रही थे। और मशरूम एक ऐसे जिनिस है जिला बड़ा चाव से बहनी मन बनाते गला और बढ़िया घर भर के खाते। फिर इमा का औषधि गुण भी होते, या का औषधि वाले मशरूम के खेती भी होते, का ओकर उपयोगिता है, ये सब जानकारी अगर हमला बढ़िया ढंग ले फुरिया फुरिया के जानना है तो हमला कोनो बढ़िया जानकार मनखे मल गोड़ बात करना चाहिए, या कोनो इसे गोड़ बात करे है ओला सुनना चाहिए। तो कहे के मतलब आज हमन भेंट वार्ता जो लेके आने हों ओमा बहुत ही बढ़िया एक जानकारी है। भेंट वार्ता के विषय है औषधि मशरूम की खेती एवं उपयोगिता। जानकारी देवत हैं डॉक्टर चेतना जांगड़े, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबाले। इखर से गोड़ बात करे हैं हमर बैसाखू भैया मन। आवा सुनथन ये सुघर गोड़ बात ला।
1: संगी हो, जैसे कि हम जानत हन कि औषधि मशरूम की खेती करे ले अबड़े फायदा है और एकर कह जाए कि स्वास्थ्य ऊपर घलो बढ़िया प्रभाव पड़ते और दवाई घलो बना जाते। तो यही जानकारी ला लेके आए हैं अपन आज के कार्यक्रम में। और आज के विषय है औषधि मशरूम की खेती और उपयोगिता। तो हमारे फोन लाइन के माध्यम ले जुड़े हमारे अतिथि शिक्षक आप और कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा ले डॉक्टर चेतना जांगड़े मन। डॉक्टर साहब अपन के स्वागत है, जय जोहार।
2: आप सबो जन ला जय जोहार, जो मन भी मोला सुना था वे।
1: हमार आज के विषय घलो है औषधि मशरूम के ऊपर मा। तो औषधि मशरूम का है बता।
2: सबसे पहली मैं बताना चाहूँ कि हमार जो मशरूम हावे तो हमार जो छत्तीसगढ़ हावे उमा इतना प्रकार के मशरूम होते है की जेकर कोई सीमा नहीं है। बस एकर इतना होते है की औषधीय मशरूम जो होते ओला सेवन करेला आना चाहिए। तो ओकर बारे में मैं आज थोड़ा कन बताऊं। तो जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हो सकते कॉर्डिसेप्स मशरूम, जिला कीड़ा जड़ित मशरूम भी कहा जाते, जिला आजकल सब जन खाते और जवान रहे बदला खाते। और वो आजकल इतना महंगा बिकते कि अगर किसान भाई बहनी मन इला उगाही तो मन माला माल हो जाएगी। एकर अलावा हमन गैनोडर्मा देख सकथन औषधि मशरूम में, जिला ऋषि मशरूम भी कहते। एकर अलावा हेरिसियम मशरूम भी आते जिला लायंस मैन घलाव कही थे। एला लायंस मैन एकर भी कही थे एमा शेर के जो झब्बा होते तेकर असाने दिखते सफेद सफेद तेकर बा एला लायंस मैन भी कही थे। एकर अलावा एक था जापानीज मशरूम आते शिटाके जिला कही थे, तीहू हमार छत्तीसगढ़ में उग सका थे।
1: आनी बानी की किस्म बताया तो एकर लगाए के विधि सबके इस पान कहाँ ले मिला था, कैसे मिला था, थोड़ा कुछ जानकारी बताता ना।
2: ये जितना भी मशरूम हमन बोले हैं और जितना भी और अन्य प्रकार के मशरूम किसान भाई बहनी ला चाहिए, सब प्रकार के मशरूम के जो बीज होते हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मशरूम के एक था लेबोरेटरी हवा तीहा बन थे।
1: अच्छा,
2: साफ सुथरा नया बीज सबो झन ला मिल सकते।
1: कतेक रुपया में इसे एकर भाव हो है, किसान संगवारी में अगर खेती करना चाहते तो।
2: एला ज्यादातर सबो मशरूम के बीज है लगभग ये 30 रुपए पौवा में मिलते।
1: वाह, बने सस्ता है ता।
2: बने लगा सका थे। एकर अलावा वहाँ प्रशिक्षण भी देते और समय समय पर

0: दिन के भी होते, कभी कभी एक हफ्ता भर के होते। तो
1: अच्छा।
0: यहाँ किसान, हमारे किसान भाई बहनी जितना भर होते निःशुल्क होते ज्यादातर। तो ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय के देन हवे हमारे भाई बहनी पर।
1: अच्छा, बढ़िया बात बतावा था। तो कैसे कैसे एकर इस पान के हमला तैयारी करना रथे, कैसे कैसे लगाना रथे, सबके अलग अलग विधि हो है तो थोड़कुन बता देता ना।
0: एमा सबसे पहली हमला साफ सुथरा बीज चाहिए, तो एला साफ सुथरा बीज लगाए के भी प्रशिक्षण होते। अगर हमारे किसान भाई बहनी चाहत है कि ओमन बीज बनाए खुद सीख सकत है, तो ओकर
1: अच्छा।
0: भी प्रशिक्षण होते। तो ओला लगाए बर हमला ज्यादातर हमारे जो गेहूं के बीज आते तेला बॉईल कर लेथन। ये कहा कि फकुन होते जितना भी मशरूम होते, तो छोटा छोटा टुकड़ा में काट के हमारे लैब में जो कि मीडिया होते, ज्यादातर पोटैटो डेक्सट्रोस मीडिया जो कि ओकर खाना होते,
1: अच्छा।
0: ओमा ओला डाले जाते ताकि वो जो फंगस हावे कवक हावे ओमा अपन जाल ल फैला सके। फिर ओमा के छोटा छोटा टुकड़ा हमन जो उबाले रेखन गहूं के तेमा डाल के हमन ला ओला काटन जो आते ओला मुंह ला बंद करके हमन ओला रखन।
1: अच्छा।
0: ज्यादातर एमा जो तापमान जो होते 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एकर में ठीक रहते बीज उत्पादन बर। एकर अलावा एमन के जितना भी खेती के जो प्रक्रिया होते वो सब मशरूम के अलग अलग होते।
1: अच्छा।
0: बीज के प्रक्रिया बनाए बस सबके सेम रहते लगभग, बस एकर उगाए के जो तरीका होते वो थोड़ थोड़ अलग होते। काबर की छत्तीसगढ़ बरसात आगे हावे, तब पैरा मशरूम हमन बहुत खाथन। तब पैरा मशरूम जो लगाए के तरीका होते, हमारे जो धान के कट्टी होते तेला हमारे रखे रहन, तेला बस हमारा बंडल बांधना है, एक गट्ठा बांधना है, गर्म पानी में डुबाना है 1-2 घंटा भर, ओला बाहर निकालना है, ठंडा करना है, ओला लेयर बाय लेयर डालना है, बीज ला बीज बीच में डालना है, तहां प्लास्टिक से ढक के रख देना है। अच्छा हुआ तहां थोड़े दिन बाद देखा कि ओमा पैरा पुटू तैयार हो जाएगी।
1: हाँ, बताओ ना।
0: ऐसने तरीके से आउ अलग अलग प्रकार के मशरूम आते, जेकर एक ठना बोलते जैसे शीताके मशरूम हो गए जो कि जापान से आए है।
1: हाँ,
0: जापान के लोग मन इला लकड़ी के गट्ठा में उगाते, ता
1: अच्छा।
0: लकड़ी के गट्ठा का हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में का मिले लड्डू मिल थोड़ा मुश्किल पड़ी।
1: हाँ।
0: हमारे पर होते धान के भूसी होते गेहूं के भूसी होते, ता हमन काज कर सकथन इला ले सकथन। एकर अलावा लकड़ी के जो मिल होते ओकर में बुरादा निकलते लकड़ी के जब काटथन,
1: हाँ।
0: तेला ओमन हमन लकड़ी के जगह मोला मिला सकथन। ओकर बाद जब हम सीताके के बीज ले एमा मिलावो तो वो लकड़ी के गट्ठे असन ही काम करी। एकर से
1: अच्छा।
0: का होई कि जो मशरूम होते सीताके वो जल्दी ओकर पैदावार होई, हमर लागत भी कम लाई थी किसान भाइयों बहनों। और एकर जो रेट हवे नॉर्मल जो हमन मशरूम बेचथन ओकर से एकर रेट है ज्यादा रही थे।
1: अच्छा। और कैसे
0: और
1: दवाई वाला कहे है तो का कैसे कैसे उगा सकते हैं?
0: जैसे कि अभी शिताके मशरूम का जैसे मैं बताया हूँ, तो यू है एक था औषधीय मशरूम हावे जेला सेवन करे बर कैलेस्ट्रॉल जो होते हमर मत बीमारी जो शरीर में आते कैलेस्ट्रॉल तेला वह कम करते। एकर अलावा एमा एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियन गुण भी पाए जाते। काहे आकर बरसात है तो हमन कचू कचू बाहर के खा लेन, तो ओकर
1: सही।
0: साथ में एकर थोड़ा सा सेवन कर लेबो तो ओला वो का दबा दी। एकर साथ
1: अच्छा।
0: ही हृदय स्वास्थ्य के भी है बहुत लाभदायक होते। और एकर साथ हमन जो विटामिन डी जो सूरज से मिलते वो विटामिन डी घलो एमा मिलते सीताके
1: अच्छा अच्छा
0: मशरूम में, तो हमन एला निरंतर खावो तो हमर कोई और दवा पानी अलग से खाए के कोई जरूरत नहीं होगी। एकर अलावा कॉर्डिसेप्स मशरूम आते कीड़ा जड़ी मशरूम तेला बोलते,
1: अच्छा।
0: पहाड़ मन हिमालय मन में कीड़ा होते तेकर कीड़ा से हा जड़ी में उपज होते एकर कॉर्डिसेप्स एकर नाम है। यह बहुत महंगा मिलते हैं जैसे कि 40 हजार से 1.5 लाख तक के एकर रेट जाते जब इला बेचथन था। हाँ 1 किलो इसका जो सूखा पाउडर आता है या इसके कैप्सूल्स बनते हैं, इसके कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं इसके पूरे कॉर्डिसेप्स मशरूम के। तो अब तक का जितना महंगा मशरूम आता है उसमें से कॉर्डिसेप्स सबसे महंगा है।
1: अच्छा। ला उगा सका थी।
0: एला उगाए के विधि ये होते जैसे हमन अन्य में भूसा के इस्तेमाल करथन, एमा भूसा के ना छोड़ के हमन एमा चावल के छोड़ छोट छोट टुकड़ा होते ना तेमा हमन एला उबाल के बढ़िया निर्जमीकरण करके हमन बढ़िया साफ सुथरा कमरे में एला लगा सकथन।
1: हाँ।
0: एला बीच बीच में थोड़ा सा रोशनी के जरूरत होते तो एला

0: 12 से 16 घंटे हमला डेली अला लाइट दिखाएला पड़ते। काबा की यह हल्का ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर चाहिए तो थोड़ा सा तो उला सूरज के असन थोड़ा लाइट चाहिए, तो 12 से 16 घंटे आसपास हम लाइट की आवश्यकता होते।
1: अच्छा
0: एक अलावा लायंस देन भी एक तो मशरूम होते जो औषधीय मशरूम होते जो हमें बताए रहे हैं। लायन के जो धब्बा होते सफेद सफेद ओकर असने दिखते, यू हमें जो लकड़ी कटे रही थे ओकर जो बुरादा होते और हमारे जो भूसी होते ओला मिला के हमन एक था ओकर तैयार करथन जेमा हो उगते, जेला हमन सबस्ट्रेट बोलथन जेमा वो खाना खाते जो हमन मशरूम हवे, तो तेला मिला के हमन एक था तैयार कर सकथन। देकर बीच बीच बीच बीच में हमन ला क्या करना है, हेरिसियम यानी कि लायंस मेन के बीज ला डालना है और ओला रखना है लगभग यू है 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इला रखना है। ओकर बाद
1: अच्छा
0: जब एमा हल्का से कुटू असन डोहरू असन दिखे रख दे जेला हमन पिन हेड बोलथन, तेकर बाद ओमा पानी डालना चालू कर सकथन। ओकर बाद लायन के झब्बा असन बड़े बड़े सुंदर असन इहू मशरूम हो सकत है जेहू बहुत लाभदायक है। इसमें हमारा जो प्रतिरोधक जो क्षमता होता है उसको ये मशरूम बढ़ाता है,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: हमारे किसान भाई बहने इसको उगा के स्वयं भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको बेचने के लिए भी ये काम आता है, दवाइयां बनती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं इसका जो सूखा पाउडर होता है उसको लोग लेते हैं जिनसे वो कॉस्मेटिक्स के सामान बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं।
1: जैसे कि चर्चा करी अभी के मशरूम की जैसे खेती करना है तो कतेक लागत हो सकत है और कतेक जगह की जरूरत पड़ते थोकुन बताहा अपन।
0: जैसे अपन छोटा किसान हावन तो हमन जो हमर घर हावे ओकर पीछे एरिया में एक छोटा सा कमरा हो जाए तेमा हमन कर सकत हन। काबर की हमर जो गर्मी के जो समय होते बस ओमा थोड़ा सा दिक्कत आते,
1: हाँ
0: बाकी सब समय में हमन ओमा मशरूम लगा सकत हन।
1: अच्छा, घर के कुरिया ठीक रही कहा था। और
0: हाँ
1: तापमान
0: घर
1: एक
0: के
1: बार कई जैसे कहे हा बीज उत्पादन करना है तो 23 डिग्री ले 25 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है इसे कह के, तो सब
0: सब
1: मशरूम पर अलग अलग तापमान की जरूरत पड़ती है, कतके में हो जाही।
0: मशरूम ला लगभग अलग अलग तापमान की जरूरत होती।
1: अच्छा
0: लगभग ज्यादातर मशरूम 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड मांगते, लेकिन
1: हाँ
0: कुछ कुछ मशरूम होते जिला ठंडा जगह की आवश्यकता होती,
1: हाँ
0: जैसे कि
1: हाँ
0: बताया था सीताके मशरूम हो गए, कॉर्डिसेप्स मशरूम हो गए, हमार बटन मशरूम हो गए जो बाजार में भी बिकते तेला बटन मशरूम बोलथन,
1: हाँ
0: थोड़ा ठंडा जगह की आवश्यकता होते।
1: अच्छा, जैसे किसान संगवारी मन एकर प्रशिक्षण आप मन देहा कहे हा, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय है, एमा प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध रहते, और बाजार के मांग कैसे पूरा हो सकत है एकर। कभो कभो संगवारी मन नहीं जाने के कौन प्रकार के हर मशरूम में कई के, तो खाए बर थोकुन हिचकिचाते हैं, बाजार घलो में बढ़िया नहीं मिल पाए, तो बेचे के का व्यवस्था रहती।
0: जैसे कि हमन कछु मशरूम ला हमन उगा लें, ओला उगाए ले पहली हमन ला ये देखना है कि हमारे आसपास के एरिया में कौन से मशरूम है तेला उमन खाए ला पसंद करते हैं। आसपास में देख लें कि वो मशरूम ला उमन खाते हैं, तो उमन हमन लोकल मार्केट होते दुकान
1: हाँ
0: हवे तो डायरेक्ट हमन वो जगह सेल कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एकर
1: अच्छा
0: अलावा हमन ला अगर बड़े पैमाने में लगाने हवे तो हमन ओकर पैकेट बनाकर बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते या अन्य बड़े बड़े बड़े उपभोक्ता होते ते मन ला हमन डायरेक्ट सेल कर सकत हन।
1: अच्छा
0: एकर से का होही हमर जो हमन उपज करथन ज्यादा करत हन वह वेस्ट घलाव नहीं होही, कम
1: अच्छा
0: करत
1: अच्छा
0: हन तो लोकल मार्केट में बेच सकत हन।
1: शुरुआत कत कत से कर सकते हैं बताओ ना तो।
0: एक छोटा सा रूम हो गए मान ले तो ओमा एक बैग मान ले हमन लगाथन मशरूम के तो ओमा 3 से 4 तुड़ाई हो जाते, तो एक बैग मान ले ऑयस्टर मशरूम हमन लगाथन ओमा 3 से 4 किलो असन निकल जाए एक बैग में, और 1 किलो मशरूम में लगभग 4 से 5 बैग बनते। एकर अलावा जैसे हमन फ्रेश मशरूम हवे तो आजकल लइका मन जेंजी के लाथे तो ओमन ला बाहर बाहर के खाए के बहुत शौक रहते, तो
1: हाँ
0: एमा अन्य प्रोडक्ट भी बनते। आप ताजा मशरूम ना बेच के इसमें एमा के बर्गर पिज्जा मशरूम का सूप मशरूम समोसा मशरूम पापड़ मशरूम अचार ये बना सकत हन।
1: अच्छा, कई प्रकार के व्यंजन है ना मशरूम ले घलो तैयार करके
0: कई
1: बढ़िया। हाँ
0: हाँ कई प्रकार के व्यंजन आते, कम से कम 100-200 तो ऐसे व्यंजन आते।

0: मार्केट में ऐसी बना के हमन का कर सकत हन, ओला बेच सकत हन।
1: तो हमारे किसान संगवारी मन ला कौन प्रकार के संदेश देना चाहता था तो कौन बता देता?
0: हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों बहनों, मतलब मैं यही संदेश दे सकत हूँ कि आप मन मशरूम उगावा, सबसे पहले खुद खाओ, काबर की बहुत औषधीय गुण जो होते उमा मशरूम में पाए जाते। एकर अलावा आसपास के जितना भी लोग होते उमन ल एकर बार जागरूक करा। आप मन कितना इंतजार करूँ, खुद लगाओ, खुद बेचा और संपन्न घर पाओ,
1: ठीक है, तो खुद खावा।
0: खुद खावा और खुश रहा।
1: हाँ, बढ़िया बात बताया है। आज हमला विषय रही से औषधि मशरूम के खेती और उपयोगिता। आप हो डॉक्टर चेतना जांगड़े, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय कटघोरा जिला कोरबा के। ऑनलाइन के माध्यम से हमारे किसान संगवारी मल्ला बढ़िया जानकारी दे है। जय जोहार, राम राम।
0: राम राम।
2: देखो संगी हो, कतका बढ़िया जानकारी देवत रहीन है ना भाई, औषधि मशरूम की खेती और उनकर उपयोगिता के विषय में जानकारी कौन देवत रहीन है? डॉक्टर चेतना जांगले, अतिथि शिक्षक कृषि महाविद्यालय कटघोरा ले, अभी घर से गोट बात करत रहीन है बढ़िया ढंग ले हमार बैसाखू भैया। संगी हो, अब इतका सुघर जानकारी ले भरे गोट बात सुने के बाद आप मन की मन करत हो भाई कि एक सुघर गीत सुन लेते हैं। तो भाई आप मन के मन करत है तो जरूर सुनथन, आवाओ ये सुघर गीत ला जे लगावत है दुखिया भाई मर काम और संगवारी में।

सही बात है संगी। हो पानी गिरे, घाम रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, हवा रहे, तूफान रहे, मैं है वे तभी तो हमन गुठियाए बताए बराई जैसन है ना भाई। यही भाव लेके ये सुघर गीत लगावत रही है दुखिया भाई मरकाम और उनका संगवारी मन। संगवारी हो ये सूचना है, जैसे कि आप मन जानत हो हर बृहस्पतवार और शुक्रवार के संझा बेरा 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, जेमा हमर किसान भाई मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर पर विशेषज्ञ मन ले फोन करके सवाल पूछते हैं और ओखर समाधान पाते। यही कड़ी में ये बृहस्पतिवार यानी कि दिनांक 30 जुलाई 2026 को हमन के स्टूडियो में रही ही हमर पहुना शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे। इखर सो बिहनिया बेरा 10:30 ले 11 बजे तक के सवाल पूछे के विषय रही ही बरसात में कंदवा चरने एवं त्वचा रोग संबंधी रोग एवं उनका निदान। औ बिहनिया बेरा 11 बजे ले 11:30 तक के सवाल करे के विषय रही ही शरीर में होने वाले तेल व मत्सों का कैंसर में परिवर्तित होने वाले लक्षणों की पहचान एवं निदान के उपाय। ये विषय से संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए खातिर पर हमन के फोन नंबर हवे 2-6-6-5-9-2 एक ठो और नंबर 3-1-0-0-2-6। फोन लगाए के पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाना तक ऊपर थे जौन हवे 0-7-7-5-2 तो फोन जरूर लगा हा संगवारी हो। और ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग ये प्रसारण आप मल्ला सुने बर मिली 30 जुलाई 2026 और 31 जुलाई 2026 संझा बेरा 7:30 ले 8 बजे तक। और देखो गोट बात करत करत बेरा कैसे बुलक गए पते नहीं चली संगवारी हो। और आबो इसने गोट बात करवो बढ़िया गीत संगीत के साथ नवा नवा जानकारी के साथ। आज के हमर गोट बात की बेरा यही सिरावत है। अपन चैतु भाई लदाओ विदा। आप जम्मू संगवारी मल्ला चैतु भाई के राम राम जय जोहार।

कार्यक्रम ग्राम सभा भी हम प्रसारित कर रहे थे FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में संसद समीक्षा हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

लोकसभा की संसदीय की कार्यवाही की समीक्षा के लिए पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण

प्राधिकरण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर, पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी

0: वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे, जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। यह विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संसद समीक्षा अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15

श्रोताओं, कुछ आवाजें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर दौर में नए अर्थ लेकर लौटती हैं। जैसे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, जैसे पहाड़ों से उतरती किसी निर्मल नदी का कलकल संगीत, जैसे सावन की पहली फुहार, ऐसी ही एक आवाज है आज हमारे साथ कार्यक्रम में।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। आज ही आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू। आज की इस प्रस्तुति में बात करेंगे भारतीय सिनेमा की उस महान पार्श्व गायिका की, जिनकी आवाज़ ने भाषा, प्रदेश और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर करोड़ों दिलों में अपना घर बनाया। वे केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा की शान नहीं, बल्कि पूरे भारतीय संगीत जगत का गौरव है। बात हो रही है आज गायिका के एस चित्रा की।

श्रोताओं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक साधारण परिवार में जन्मी कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा ने शायद बचपन में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी आवाज दुनिया के अनेक देशों में भारतीय संगीत की पहचान बनेगी। उनके पिता के एन कृष्णन नायर स्वयं संगीत के अध्यापक थे। घर में सुबह की शुरुआत रियाज से होती थी। संगीत उनके लिए केवल कला नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका था और यही वातावरण छोटी चित्रा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा चित्रा ने अपने पिता से ली। बाद में उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। घंटों रियाज, सुरों पर अनुशासन और धैर्य, ये साधना ही आगे चलकर चित्रा की गायकी की सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी आवाज़ में जो सहजता हमने सुनाई देती है, उसके पीछे वर्षों का कठिन अभ्यास छिपा हुआ है।

श्रोताओं, रोजा फिल्म के इस गीत में यदि एआर रहमान का संगीत प्रकृति का विस्तार रचता है तो केएस चित्रा की आवाज़ उसमें जीवन का स्पर्श भर देती है। उनकी गायकी कभी संगीत पर हावी नहीं होती बल्कि संगीत के साथ एकाकार हो जाती है और ये ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। साथियों, मलयालम फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एम जी राधा कृष्णन ने के एस चित्रा को उनकी फिल्म अत्तहासम और बाद में स्नेहा पुरमम मीरा और नंजन एका नानू में मौका दिया। प्रसिद्ध तमिल संगीत

संगीतकार इलैया राजा ने KS चित्रा को तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म नेथन अनंत कुइल के माध्यम से परिचित करवाया। इलैया राजा के संगीत में श्रोताओं लोक धुनों की मिट्टी भी है, शास्त्रीय संगीत की गंभीरता भी और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रेशन की भव्यता भी। ऐसे संगीत में सुर की छोटी सी चूक भी साफ सुनाई देती है, लेकिन चित्रा ने हर बार ये सिद्ध किया कि कठिन से कठिन धुन भी उनकी आवाज़ में सहज लगने लगती है। और अब आइए आपको सुनवाते हैं वो गीत जिसने हिंदी भाषी श्रोताओं के बीच KS चित्रा की पहचान को और अधिक मजबूत किया। प्रेम, संकोच और मधुरता से सजा ये गीत आज भी सुनने में उतना ही ताज़ा लगता है।

श्रोताओं, आज 27 जुलाई, आज ही के दिन साल 1963 में के एस चित्रा का जन्म हुआ। और हिंदी फिल्म संगीत में के एस चित्रा ने फिल्म लव, प्यार तूने क्या किया, विरासत, अक्स, अशोका और रंगीला जैसी कई हिट फिल्मों में अपनी गायकी से संगीत प्रेमियों के दिलों को जीता। सारंगी, गिटार वादक उस्ताद सुल्तान खां के साथ उनकी एल्बम पिया बसंती भी काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। और फिल्मी गीतों के साथ ही साथ भक्ति, क्लासिकल गीत रचना, गज़ल और पॉप एल्बम में भी अपनी जादुई आवाज़ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया के एस चित्रा ने। के एस चित्रा ने प्रसिद्ध गज़ल गायक गुलजार और भूपिंदर के साथ आई एल्बम सनसेट पॉइंट्स बेहद लोकप्रिय हुए उनके ये एल्बम। और के एस चित्रा ने लगभग 200 बॉलीवुड गानों के लिए अपने रिकॉर्डिंग की है। और दक्षिण भारत की नाइटिंगल के एस चित्रा ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गीतों को अपनी आवाज़ की मधुरता से सजाया है। और ये किसी भी भारतीय गायिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के कारण उन्हें मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, साउथ की कोकिला और केरल की वनबंदी जैसी उपाधियां से नवाजा गया। और अब आपको सुनाते हैं एक और ऐसा गीत जिसमें के एस चित्रा की आवाज़ रात की खामोशी की तरह मन पर उतरती चली जाती है।

श्रोताओं, के इस चित्र बदलते संगीत तकनीक और बदलती पीढ़ियों के बीच भी अपनी पहचान कायम रखी उन्होंने, और उनकी आवाज़ ने कैसेट का दौर देखा, सीडी का दौर देखा, एफएम रेडियो का दौर देखा, और आज डिजिटल संगीत के दौर में भी उतनी ही लोकप्रिय बनी हुई है गायिका के एस चित्रा। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान की बात करें तो भारत सरकार की ओर से साल 2005 में पद्मश्री और साल 2021 में पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया, और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग राज्यों से भी कई अवार्ड्स मिले, जैसे केरल सरकार की ओर से उन्हें अवार्ड मिला, उन्हें केरल सरकार की ओर से 18 पुरस्कार मिले, और आंध्र प्रदेश से 12, तमिलनाडु से 5, कर्नाटक से 4, और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी उन्हें सम्मान मिला, पुरस्कारों से नवाजा गया। साथ ही 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, और साथ ही साथ कई रियलिटी शोज में भी बतौर जज वे नजर आईं। श्रोताओं, पार्श्व गायिका के इस चित्र को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बार सम्मानित किया गया। साल 2003 में उन्हें ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मान मिला, और 2024 में उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स का खिताब भी मिला। फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स भी उन्हें 10 बार मिल चुका है, और इसके अलावा उन्हें कलाई मामड़ी, लता मंगेशकर अवार्ड्स, स्वरलया यसुदास अवार्ड और संगीत रत्न जैसे कई सांस्कृतिक सम्मान भी दिए गए हैं। इतने पुरस्कार और सम्मान इस बात का प्रमाण है कि के.एस. चित्रा सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक मजबूत पहचान है। आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें अनेक शुभकामनाएं देते हैं, और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जिसमें भारतीय संस्कृति की मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोक संगीत की आत्मीयता दोनों ही साथ साथ सुनाई देती है। और इस गीत को सुनते हुए ऐसा लगता है साथियों कि के.एस. चित्रा केवल शब्द ही नहीं गा रही, किसी गांव की पगडंडी, किसी आंगन की हंसी और किसी बेटी की मुस्कान को सुरों में पिरो रही है।

श्रोताओं, कुछ आवाज़ें समय के साथ इतिहास बन जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें इतिहास से आगे बढ़कर विरासत बन जाती हैं। केएस चित्रा की आवाज़ ऐसी ही विरासत है, जिसमें शास्त्रीय संगीत की गंभीरता भी है, लोक धुनों की आत्मीयता भी और प्रेम की कोमलता भी झलकती है, साथ ही प्रार्थना की पवित्रता भी। उन्होंने कभी ऊँची आवाज़ में अपनी महानता का दावा नहीं किया, केवल सुरों से अपना परिचय दिया, और वे सुर इतने सच्चे थे कि पूरी दुनिया ने उन्हें अपना लिया। और आज की इस प्रस्तुति को समाप्त करते हुए उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली का एक शेर याद आता है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ठीक इसी तरह संगीत का सबसे बड़ा उद्देश्य भी मन को सुकून देना है, और केएस चित्रा की आवाज़ ने दशकों से यही काम किया, थके हुए मन को शांति देना, बिखरी भावनाओं को सुरों में बांधना और जीवन को थोड़ा और सुंदर बना देना। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं खुशबू आपसे कार्यक्रम रजनीगंधा से लेती हूँ विदा। कार्यक्रम रजनीगंधा भी श्रोता सुन रहे थे एफएम एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।

परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल

0: प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में।

0: राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9. The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म बहु बेगम का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों के थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म सलाखे का गीत सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर, फिल्म का नाम प्यार का मौसम, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो आत्मे।
2: अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
1: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान, आज के फनकार।

0: अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा

0: कहाँ है, कहाँ है रे दूसरा? हे फौजी, तेरा जोड़ीदार कहाँ है बता? अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को? ठहरो, आओ आओ अब आयो हाथ में, आओ आओ शाबाश।
1: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी

0: Dabei hochatme. Au. Au. Sabas.
1: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुन गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी, इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो, पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
2: अरे काले

0: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरों की मैं कोई बाघ या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पर कोई काम नहीं
2: है। है, काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा,
3: क्या हुआ?
1: देखो,
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नकदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए ये सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
4: रिश्वत देना चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
2: बस बस, बहुत हो गया। बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए।

0: के सामान को लगाम दे वरना।
1: तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से।
0: मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरव की कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
2: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं। जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
0: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
3: आप घर में है?
0: मैं
3: आदाब सर विशन साहब।
0: आइए आइए सेठ जी आइए।
1: नमस्ते सेठ जी।
0: नमस्कार। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
4: इतने बड़े स्टेडियम में और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
5: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
0: ऐसा नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहाँ आपको ये बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया, हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था इन सब लोगों से होशियार रहना, हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

जहां तक हल्की फुल्की भूमिकाओं की बात है तो फिल्म चमेली की शादी सन 1986 में आई थी। इस फिल्म को आप कभी नहीं भूल पाएंगे।

0: दे।
1: वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रुदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हो। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अच्छा
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM एंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। समाचार हिंदी और अंग्रेजी में अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया।

0: किया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमेरिकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House. House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation